0: श्रोताओं, अभी आप कुछ देशभक्ति गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में अनानास के वर्ष भर उत्पादन के संदर्भ में। अनानास जो कि एक उष्णकटिबंधीय फल है, इसमें विटामिन

0: ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी और खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा आदि पर्याप्त मात्रा में होता है। हमारे द्वीपों की जलवायु में इसको उगाने के लिए किसी विशेष तकनीक की ज़रूरत नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जलवायु अनानास की खेती के लिए उपयुक्त है। इन द्वीपों में अनानास का उत्पादन वैसे बहुत कम है, लेकिन इसके ताज़े फलों की मांग बाजार में हमेशा रहती है। हमारे यहाँ पर साधारणतः क्वीन व क्यू किस्में उगाई जाती हैं। क्वीन किस्म बहुत बढ़िया है, जिसके पत्ते कंटीले तथा किनारे कटे होते हैं। फलों का आकार छोटा होता है तथा औसत भार 1.25 किलोग्राम पाया गया है। फल के ऊपर क्राउन छोटे आकार के होते हैं। इस फल में बहुत सारे स्लिप्स और सकर्स बनते हैं, जो कि प्रवर्धन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। जहां तक क्यू किस्म का सवाल है, क्यू के फलों का औसत भार 2 से 2.25 किलोग्राम तक का होता है। फलों का बाहरी रंग गहरा हरा होता है, लेकिन पकने पर हल्का पीला हो जाता है। कभी हरी धारियां भी बन जाती हैं। गूदे का रंग हल्का पीला, फल रसीला तथा अच्छी खुशबू वाला होता है। किसान भाइयों, क्यू किस्म में प्रतिवर्ष प्रति पौधा सिर्फ 2 से 3 स्लिप्स और 1 से 2 सकर्स ही निकलते हैं। हमारे द्वीपों में अनानास का फलन अप्रैल से जून माह में होता है, लेकिन इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। और जहां तक फल परिरक्षण इकाई का सवाल है, तो इसके लिए तो पूरे वर्ष फलों की लगातार खेप मिलती रहनी चाहिए। एक अनानास का पौधा अपने जीवन काल में एक ही फल पैदा करता है। ये पाया गया है कि उपयुक्त पोषक तत्वों तथा वातावरण की मौजूदगी में 15 से 18 महीने बाद लगभग 40 से 50% पौधे ही फूल धारण करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, सभी पौधों में फूल लाने के लिए पोषक तत्वों के अलावा पादप वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग भी जरूरी हो जाता है। हमारे द्वीपों में पूरे वर्ष भर अनानास का उत्पादन प्राप्त करने के लिए मई से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक माह विभिन्न आकार के सकर्स यानी 350 से 500 ग्राम तक के सकर्स लगाकर तथा जब पौधे में 30 से 40 पत्ते आ जाते हैं यानी पौधे लगाने के 12 से 14 महीने बाद 100 ppm इथरल का प्रयोग कर अनानास की फसल हम पूरे वर्ष ले सकते हैं। 100 ppm एथरल 50 मिलीलीटर घोल एक पौधे के ऊपर डालना चाहिए। किसान भाइयों, इस तकनीक को अपनाने से पूरे वर्ष भर अनानास की फसल हमें मिलती रहेगी। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।
1: एग्री टिप्स अभी आप सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:10 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए आज रात 8 श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज 16 अगस्त को दोपहर बाद 2 डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल रविवार 16 अगस्त को सुबह 9 एमवी नालंदा श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल ही रात 9 लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए 17 तारीख को सुबह 7 श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जहाज 18 तारीख को शाम 4 कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी रानी चंगा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड आज शाम 5 स्वराज द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 16 अगस्त को सवेरे 6 श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी बम्बुका कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। और स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
2: धनुष।

इंद्रधनुष के इस कार्यक्रम में मैं शबाना आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं,

बल्कि उन अनगिनत वीरों की कुर्बानी को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया। आज जब तिरंगा आसमान में शान से लहराता है तो हमें उन वीरों की याद आती है जिनके साहस और बलिदान ने भारत को आज़ाद देखा। जी हाँ दोस्तों, आज बातें आज़ादी की। दोस्तों, आज़ादी वो है जो हमें अपने सपनों को खुलकर जीने का हक देती है। आज़ादी वो है जो हमें अपने विचारों को बेखौफ कहने की हिम्मत देती है। आज़ादी वो है जिसमें तिरंगा देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और दिल से बस एक आवाज़ निकले, भारत माता की जय। दोस्तों, आज आज़ादी का जश्न चारों ओर है। हर गली, हर चौराहे और हर दिल में आज एक ही एहसास है, आज़ादी का एहसास। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे उन लाखों वीरों की कुर्बानियां हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए न्यौछावर कर दिया। और आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, अपने सपनों को जीते हैं और अपने तिरंगे को गर्व से लहराते हुए देखते हैं तो दिल से बस एक ही आवाज निकलती है कि जागे हैं अब सारे लोग तेरे, देख वतन, गूंजे हैं नारों से ये जमीन और ये गगन। आज हम सब मिलकर गाएंगे, झूमेंगे और अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे।

दोस्तों, आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारे वीर शहीदों के बलिदान की पहचान है। ये वो आज़ादी है जिसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, तो किसी ने देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारी पहचान हमारा तिरंगा है, हमारी शान हमारा हिंदुस्तान है, और हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। तो आइए उन सभी वीरों को नमन करते हुए उसी जुनून और उसी जज्बे के साथ गुनगुनाते हैं कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।

दोस्तों, आज़ादी सिर्फ जंजीरों से बाहर निकलने का नाम नहीं, आज़ादी उस हौसले का नाम है जो मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानता। पैरों की बेड़ियां किसी के कदमों को रोक सकती हैं, लेकिन उसके सपनों को नहीं। मिट्टी की परतों के नीचे दबा एक नन्हा सा बीज भी जब हौसला करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो मिट्टी को चीर कर नई उम्मीद बनकर बाहर आता है, क्योंकि दोस्तों, जिनके इरादे मजबूत हो उनके दिल कभी सूने नहीं पड़ते, और जो सुबह की पहली किरण का इंतजार करना जानते हैं उन्हें अंधेरी रात की सलांखें ज्यादा देर रोक नहीं सकती।

दोस्तों, इसी के साथ आज़ादी के इस पावन पर्व पर आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दीजिए इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त शबाना को इजाजत।

इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी शबाना। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 331वीं कड़ी।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

सुरेश वाडकर और ए हरिहरन की आवाज़ों में अभी आपने सुना रामचरितमानस गान की 331वीं कड़ी। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार तटों के पास और समुद्र में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, जिस कारण समुद्र काफी अशांत रहेगा। मछुआरों को कल यानी 16 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

सुबह 7 बजे लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और सुबह 8:50 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण समारोह और द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों को संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। ये दोनों ही कार्यक्रम आप विविध भारती FM चैनल पर भी सुन सकते हैं। तेलुगु कार्यक्रम दोपहर 12 बजे, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जी गोपी की वार्ता होगी। दोपहर 12:30 पर मलयालम कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें विजयन सी के द्वारा लिखित विशेष रूपक आप सुन पाएंगे। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा कुछ देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप सुनेंगे SP कलई राजन से ली गई भेंट वार्ता। 5:30 बजे बांग्ला कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। किसानवाणी कार्यक्रम संध्या 6 बजे, जिसमें श्रीमती आभा गुप्ता की वार्ता होगी। विषय रहेगा आजादी का पर्व 15 अगस्त। संध्या 6:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। संध्या 6:45 पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों के नाम संदेश की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। युववाणी के तहत संध्या 7:30 पर सुनिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम ए मेरे प्यारे वतन। इन कार्यक्रमों के अलावा 9:15 पर स्पॉटलाइट तथा 10:00 संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत जुनैन खान का सितार वादन होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।

0: कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी नेताजी स्टेडियम में सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों से प्रतिबंधित सामान नहीं लाने की सलाह दी गई है और नई दिल्ली में

आयोजित होने वाले 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में बालिका अंडर 17 फुटबॉल टीम द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह 7 बजे से दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण और देश के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आज मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। द्वीपों के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम नेताजी स्टेडियम से राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 8:50 से करेगा। इसके अलावा आज रात

उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल्टी के जोशी सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। द्वीपों के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम नेताजी स्टेडियम से राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण सुबह 8:50 से करेगा। इसके अलावा आज रात 8 बजे और कल सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन का पुनः प्रसारण होगा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम आज सुबह 8:50 से द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी द्वारा नेताजी स्टेडियम से ध्वजारोहण और द्वीपवासियों के संबोधन का सीधा प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए आज यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। वीआईपी और पास धारकों के वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। उपराज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के वाहन सुबह 8:30 तक नेताजी स्टेडियम के अंदर पार्क करने होंगे। गुलाबी पास धारकों के वाहन सुबह 8:15 तक अंडमान क्लब और स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने पार्किंग क्षेत्र में खड़े किए जाएंगे। पीले पास धारकों के वाहनों की पार्किंग मॉडल स्कूल, क्लॉक टावर और जिमखाना क्रॉसिंग होते हुए नेताजी स्टेडियम के मुख्य गेट के पश्चिमी हिस्से तथा स्विमिंग पूल के पास करनी होगी। बिना पास वाले वाहन वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल के पास पार्किंग में खड़े किए जाएंगे। अबरडीन बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग से बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन और नया गांव होते हुए जाना होगा। वहीं साउथ पॉइंट से अबरडीन बाजार जाने वाले वाहन शादीपुर, नया गांव जंक्शन, पुलिस लाइन, आरवीसी सचिवालय जंक्शन और गोलघर मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। भारी वाहनों और बसों को 11 बजे तक सेलुलर जेल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। समारोह स्थल की ओर वाई नारायण जंक्शन, आर के मिशन, फायर ब्रिगेड जंक्शन और वाटर स्पोर्ट्स जंक्शन से सुबह 8:30 के बाद वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। जीबी पंत अस्पताल जाने वाले वाहनों को 11 बजे तक गांधी प्रतिमा, मैरिन गेट, सिस्टी नगर, डिगनाबाद, सीशोर रोड और खान जंक्शन होते हुए अस्पताल के निकास द्वार तक जाना होगा। आपातकालीन वाहनों के लिए वाई नारायण जंक्शन से सेलुलर जेल होते हुए जीबी पंत अस्पताल का मार्ग सुबह 8:30 से 11 बजे तक खुला रहेगा। परेड टुकड़ियों के वाहन जवानों को उतारने के बाद वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स स्कूल की पार्किंग में खड़े रहेंगे और परेड समाप्त होने के बाद वाई नारायण जंक्शन होते हुए लौटेंगे। इस बीच आज अबरडीन जेटी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नॉर्थ वे जाने वाली निजी पर्यटक से नौकाओं का संचालन जंगली घाट जेटी से किया जाएगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी ने द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय साहस, त्याग और अटूट संकल्प की एक गौरवपूर्ण याद दिलाता है। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक सेलुलर जेल उन अनगिनत देशभक्तों की अदम्य भावना के एक स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ी है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अमूल्य बलिदान दिए थे। उनकी विरासत हमें समर्पण, ईमानदारी और जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ देश की सेवा करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। इस अवसर पर उन्होंने द्वीपवासियों से राष्ट्र के लिए एक समृद्ध, सुरक्षित और समर्थ भविष्य के निर्माण का प्रयास करने की अपील की है। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने भी इस अवसर पर द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति की भावना को गर्व के साथ याद करते हुए एक सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेने तथा अपने द्वीपों एवं राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सुरक्षा संबंधी निर्देश और फुटबॉल। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के सुचारू और सुरक्षित आयोजन के लिए प्रशासन ने समारोह स्थल पर आम लोगों और आमंत्रित अतिथियों से सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

प्रशासन ने लोगों को निमंत्रण पत्र पास रखने और सुरक्षा जांच में सुविधा के लिए समय से पहले पहुंचने को कहा है। सुरक्षा को देखते हुए फूलों की माला, गुलदस्ता, गिफ्ट पैकेट, पावर बैंक, लैपटॉप, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, लाइटर, माचिस, हैंडबैग सहित अन्य प्रतिबंधित सामान नहीं लाने की सलाह दी गई है। नई दिल्ली में 18 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले आगामी 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में बालिका अंडर 17 फुटबॉल टीम द्वीपों का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस उपलक्ष्य में नेताजी स्टेडियम में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। उन्होंने बालिका फुटबॉलरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अबरडीन बाजार और जंगली घाट में भारी भीड़ और खरीदारी की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने सभी दुकानदारों, विक्रेताओं, स्टॉल मालिकों और बाजार संघों से प्लास्टिक मुक्त बिक्री सुनिश्चित करने की अपील की है। दुकानदारों से प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने तथा कपड़े या जूट के थैले इस्तेमाल करने को कहा गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अस्थायी दुकानें और स्टॉल केवल निर्धारित स्थानों पर लगाने, आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई रखने तथा कूड़ेदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी से आसपास स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने में सहयोग करने की अपील की है। अंडमान निकोबार कमान की ओर से आज शाम 5:39 पर फ्लैग पॉइंट के सामने खड़े भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और जहाजरानी सेवा निदेशालय के जहाज़ों द्वारा एक साथ रंग बिरंगे फ्लेयर्स का प्रदर्शन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए जहाजरानी सेवा निदेशालय बम्बू फ्लैट और इसके आसपास के यात्रियों की सुविधा के लिए फिनिक्स बे और बम्बू फ्लैट के बीच अतिरिक्त जलयान सेवाएं संचालित कर रहा है। ये सेवाएं आज शाम 6 बजे तक जारी रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज सुबह 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। द्वीपों के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डी के जोशी नेताजी स्टेडियम में सुबह 9:19 पर ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों से प्रतिबंधित सामान नहीं लाने की सलाह दी गई है और नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 65वें सुब्रतो मुखर्जी कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 में बालिका अंडर 17 फुटबॉल टीम द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितम स्वतंत्रता पर्वणः पूर्व संध्यायाम् अमृतेन संभाषणेन राष्ट्रम् अभिसंबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः प्राह यत् जागतिक अशान्तेः युद्ध विभीषिकायाश्च तमसि अपि भारतीया अर्थव्यवस्था उज्ज्वल नक्षत्रवत् तीव्रतमगत्या समेधते। राष्ट्रपतिना

0: उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आइए लाल किला चलें।
3: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई है। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन यह है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहां पर अनेक प्रतीक

0: चिन्ह है। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है, लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई है और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहाँ से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं। यहां से
1: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियाँ जो हैं वो धरती तक नहीं पहुँच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहाँ तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहाँ पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था। वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहाँ सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं। प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल हैं। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में, वर्दी में सजे धजे, गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल DCP विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रगीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का

0: प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं, और उसके साथ साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है, ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है, और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहाँ रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आज़ाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है। कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है। साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है, अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं, आकर्षक परिधानों में यहां पर सामान्य जन है, एनसीसी कैडेट्स हैं, माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहां पर बनाई है, हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है। सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं, अन्य आगंतुक हैं, तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं। हल्के जामुनी रंग की दरी पर, हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहां बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र शोबोर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहां दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए

0: देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन बीके मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी, कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में।
3: अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद

संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मानगर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधैव वे कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं।

0: मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है। थलसेना की टुकड़ी के पास 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में हम सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई हम है भारत के प्रहरी हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का उनके प्रति श्रद्धावनत होने का जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी ध्वज फहराने में। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
0: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं

0: किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण के वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं। प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
1: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आज़ाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है, इस समय ध्वज स्थल

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज नमः।

0: police in Bangkok! Bangkok! Yes!
1: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलिया करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
2: जी, और

0: किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई। बेहद रमणीय दृश्य है ये
1: जी। और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना के बैंड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी। लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखार बिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र्य सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 100

50 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में

25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों,

50 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। मेरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और

लिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है, और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं, और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है, भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है, और इसलिए हमें चिप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है, और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का

कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है। हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी,

ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां से नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी, देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना। इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं।

इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5,000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों। दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा। और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रिप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है।

चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही

हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना हुआ, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पाकर के रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,

सप्तधारा की जब बात करके चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से कर और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए। टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी।

हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें काल आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है। 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है, करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष से युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। साथियों, आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था, एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में

करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20,00,000 करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था, सिर्फ 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में, 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस 25-26 में 25,00,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140,00,000 करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है।

और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल, एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दुर्बल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में, जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती

से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है, और

इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए।

33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। और इसलिए हर घर में वातावरण बने, इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी, इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो।

स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उड़ते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जनसमुदाय यहां पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में। और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
2: और माननीय
1: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
2: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के

0: भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाएं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की। दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है, लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है, और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है, क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का, बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं, तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी, और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हो, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं, और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्र हित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
0: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं, और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं, और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं, अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है, इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं, और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है, और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की

0: नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय ये जो जनता है, इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद, अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर, और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जन धन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामयी मंच है, यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का, जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
1: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं, उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई, आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं, और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं, और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
0: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है, जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत मां की बेटियां भी

0: प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, मां भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभा खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल, अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कॉमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
1: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9:17 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हम आपको श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां से स्वाधीनता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह एवं द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों के नाम संदेश का सीधा प्रसारण किया जाएगा। विवरण दे रहे हैं जाकिर हुसैन और सीमा किरकिट्टा। तो आइए नेताजी स्टेडियम चलें।
1: नेताजी स्टेडियम से मैं जाकिर हुसैन अपने साथी कमेंटेटर सीमा क्रिकेटर के साथ 80वें स्वाधीनता दिवस की मंगल बेला में अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां का स्थिति बता दें कि उपराज्यपाल महोदय राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहां स्टेडियम पहुंच चुके हैं।

राष्ट्रीय गीत की धुन आपने सुनी और अब ध्वजारोहण। उपराज्यपाल महोदय इस समय ध्वजारोहण कर रहे हैं। जी हाँ, पूरी तरह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहरा उठा यहाँ नेताजी स्टेडियम के प्रांगण में। और अब राष्ट्रगान की धुन।

0: Vayan, sus.
1: राष्ट्रगान की धुन भारतीय नौसेना बैंड द्वारा, जबकि राष्ट्रगीत की धुन फिजाओं में बिखेरी थी अंडमान निकोबार पुलिस बैंड द्वारा। परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान परेड कमांडर विंग कमांडर बी रमेश ने मंच के समीप आकर उपराज्यपाल महोदय से आग्रह किया और इसी के साथ निरीक्षण वाहन जो सफ़ेद खुली हुई जीप है मंच की ओर आ रही है, जिस पर माननीय उपराज्यपाल सवार होंगे और साथ ही उनके पीछे होंगे परेड कमांडर।
2: शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। स्वतंत्रता दिवस 2026 के परेड कमांडर है विंग कमांडर बी रमेश। परेड कमांडर विंग कमांडर बी रमेश को दिसंबर 2012 को भारतीय वायुसेना की प्रशासन शाखा में कमीशन प्रदान किया गया। वर्तमान में एयरफोर्स कंपोनेंट कमांडर के स्टाफ ऑफिसर के रूप में पदस्थ है। बी रमेश हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड में भारतीय वायुसेना की इकाइयों के प्रशासन वर्क सर्विसेज तथा कार्मिक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। और अब उपराज्यपाल महोदय का काफिला भव्य परेड की पहली पंक्ति की पहली टुकड़ी भारतीय सेना की ओर अग्रसर है। इस और इस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश। परेड की अगली टुकड़ी भारतीय नौसेना की नेतृत्व कर रहे हैं चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर युधिष्ठिर कुमार। जूनियर वॉरंट ऑफिसर सौरभ मिश्रा के नेतृत्व में परेड की ये टुकड़ी है भारतीय वायुसेना की। परेड की अगली टुकड़ी है भारतीय तटरक्षक की, अगुवाई कर रहे हैं सहायक अभियंता बी मनोहर। अंडमान निकोबार पुलिस की ये टोली है सब इंस्पेक्टर अजिताभ कुमार के नेतृत्व में। परेड की टुकड़ी इंडियन रिजर्व बटालियन की, अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार। अंडमान निकोबार लेडीज पुलिस आर्म्ड की ये टोली है सब इंस्पेक्टर ए स्नेहा के नेतृत्व में। पहली पंक्ति की यह आखिरी टुकड़ी है अंडमान तथा निकोबार वन विभाग की, अगुवाई कर रही हैं फॉरेस्टर सुश्री रिचा। उपराज्यपाल परेड की दूसरी पंक्ति की टोली की ओर अग्रसर है। और उपराज्यपाल परेड की दूसरी पंक्ति की पहली टोली की ओर अग्रसर है होमगार्ड की यह टोली है, अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अभिषेक जीएसपी। परेड की दूसरी पंक्ति की दूसरी टोली है अंडमान निकोबार पुलिस पाइप बैंड की, जो अपने मधुर धुन बिखेरेंगी। इस टोली की अगुवाई कर रही हैं इंस्पेक्टर शांति अर्जुन। पुलिस ब्रास बैंड की ये टुकड़ी सब इंस्पेक्टर बार्तिलोमे की अगुवाई में। नेवी बैंड की ये टुकड़ी है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन बी के बारिक के नेतृत्व में। परेड की अगली टुकड़ी आर्मी बैंड की है, नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर इंद्र बहादुर गुरुंग। दूसरी पंक्ति की ये आखिरी ट्रूप है अंडमान निकोबार अग्निशमन विभाग की, ट्रूप की अगुवाई कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह राठौर। देशभक्ति से ओतपोत विभिन्न टुकड़ियां वाद्य यंत्रों से सुसज्जित आज के इस भव्य परेड में शामिल हैं। परेड की तीसरी पंक्ति की पहली टुकड़ी है बॉयज एंड गर्ल्स जेएनआरएम सीनियर डिवीजन की, ये टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं ऑफिसर कैडेट शाइनी ग्रेस। बॉयज एंड गर्ल्स जेएनआरएम आर्मी डिवीजन की ये टोली है जूनियर अंडर ऑफिसर राहुल रहमान की अगुवाई में। खालसा पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्यारहचरामा और KV1 की आर्मी जूनियर डिवीजन की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं संजय VS। कामराज इंग्लिश मीडियम और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भातुबस्ती एयरफोर्स जूनियर डिवीजन की ये टोली है।

0: कैडेट सर्जेंट जी रुपेश के नेतृत्व में। और अब उपराज्यपाल महोदय आखिरी पंक्ति की अगवानी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ी धीरे धीरे आज के परेड के आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ते हुए, और आखिरी पंक्ति की पहली टोली है आर्मी जूनियर डिवीजन सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मला और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की, ये टोली कैडेट काजरी रफान हुसैन की अगुवाई में। और अब उपराज्यपाल महोदय आज की एसएससी बॉयज और गर्ल्स की टुकड़ी कमान संभाले हुए हैं ओसी कबीर ने। गाइड की ये टोली के कुशल नेतृत्व कर रही हैं पूनम कुल्लू। परेड की अगली टुकड़ी स्काउट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहनपुरा की टुकड़ी योगा कनिष्क की अगुवाई में। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रविंद्र बांग्ला विद्यालय गाइड की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं ट्वीट प्रधान। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरबीवी स्काउट्स की कुशल अगुवाई कर रहे हैं एमडी अलामीन बायत्य। और आज की भव्य परेड की ये आखिरी टोली है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल स्काउट्स की डी गोपाल की अगुवाई में। और इस तरह से उपराज्यपाल महोदय ने इस भव्य परेड का निरीक्षण किया, और अब उनका निरीक्षण वाहन सलामी मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इस वर्ष देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 150 गौरवशाली वर्षों का स्मरण कर रहे हैं। वंदे मातरम केवल ये दो शब्द नहीं बल्कि भारत की मिट्टी के प्रति प्रेम, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की अमर पुकार है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थी। इसकी गूंज ने देशवासियों के भीतर मातृभूमि के लिए समर्पण, साहस और एकता की भावना को जागृत किया। आज भी जब वंदे मातरम की धुन गूंजती है तो हमें उन वीरों के त्याग और बलिदान की याद आती है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। आन देश की, शान देश की हम संतान हैं। तीन रंगों में रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है।
1: वीर शहीदों का संघर्ष, फिर आजाद हुए आजाद रहेंगे। वीर शहीदों की जमी को हरदम हर पल आबाद रखेंगे। अब तो हम भारत की वो तकदीर लिखेंगे कि दुनिया वाले भी अब सशक्त भारत कहेंगे। परेड निरीक्षण के उपरांत उपराज्यपाल महोदय का निरीक्षण वाहन सलामी मंच के समक्ष पहुंचने को है। अब समय है अदम्य साहस के साथ किए गए कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति के पुलिस पदक से नवाजने का, और साथ ही समर्पण की भावना से किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए चुनिंदा लोगों या विभागों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किए जाने का। उपराज्यपाल महोदय बिल्कुल मंच के सामने पहुंच चुके हैं और अब वे अपने निरीक्षण वाहन से उतरे और सलामी मंच पर आ गए हैं। अब राष्ट्रपति का पुलिस पदक अंडमान निकोबार पुलिस बल के 4 जांबाज अधिकारियों को दिया जाना है। परेड कमांडर अपने स्थान पर, निर्धारित स्थान पर जाते हुए, और अब राष्ट्रपति का पुलिस पदक।
2: श्री दिलीप कुमार सील, उप निरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने सन 1992 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा प्रारंभ की। वर्तमान में आप उप निरीक्षक एवं विधि प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2004 में कचाल द्वीप में सुनामी के दौरान बचाव एवं पुनर्वास कार्य में आपने उल्लेखनीय निष्ठा एवं समर्पण का परिचय दिया। कोविड-19 के दौरान अंडमान तथा निकोबार पुलिस में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रशिक्षण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको वर्ष 2019-20 में गृह मंत्री पदक पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्रदान किया गया। आपके 34 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपकी निष्कलंक सेवा, कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल

0: जिन्हें ये पदक प्रदान करेंगे। श्री दिलीप कुमार सील, उपनिरीक्षक अंडमान निकोबार पुलिस।
1: श्री दिलीप कुमार सील, उपनिरीक्षक अंडमान निकोबार पुलिस। वे आगे आए पुलिस के यूनिफॉर्म में। उपराज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति का उत्कृष्ट सेवा पदक उनके सीने पर लगाया और काफ़ी गर्व का क्षण उनके लिए। और अब वे वापस अपने स्थान पर जाते हुए, अब श्रीमती वी सत्यावती।
0: सत्यावती, उपनिरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने सन 1992 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में सिपाही के रूप में सेवा प्रारंभ की तथा वर्तमान में प्रभारी स्थापना पुलिस लाइन एवं प्रभारी पुलिस परिवार कल्याण केंद्र के पद पर कार्यरत हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको समय समय पर प्रशंसा प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए तथा अपर स्कूल कोर्स मधुबन में आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। आपके 34 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आपकी निष्कलंक सेवा, कर्तव्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट योगदान को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर आपको उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। आज द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। श्रीमती वी सत्यवती, उपनिरीक्षक अंडमान तथा निकोबार पुलिस।
1: अंडमान निकोबार पुलिस की उपनिरीक्षक श्रीमती वी सत्यवती आगे आईं और उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों से अपने राष्ट्रपति का उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त करती हुई। बहुत ही बेहतरीन पल उनके लिए और एक एक पल की फोटोग्राफी भी हो रही है यहाँ पर।
0: सहायक उपनिरीक्षक श्री महाली उराव, भारत आरक्षित वाहिनी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। आपने सन 2002 में भारत आरक्षित वाहिनी में सिपाही सामान्य ड्यूटी के रूप में सेवाएं प्रारंभ की। अपने सेवाकाल में आपने विभिन्न दायित्वों का निष्ठा, अनुशासन एवं दक्षता के साथ निर्वहन किया तथा वर्ष 2008 एवं 2020 में पदोन्नति प्राप्त की। अवैध शिकार निरोधक अभियानों में आपने म्यांमार के नागरिकों शिकारियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, उत्कृष्ट कार्य निष्पादन एवं निष्कलंक सेवा को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर आपको उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। सहायक उपनिरीक्षक श्री महाली उराव, भारत आरक्षित वाहिनी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह।
1: अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह भारत आरक्षण वाहिनी के सहायक उप निरीक्षक श्री महाली उराव अपना ये उत्कृष्ट सेवा मेडल जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है उसे प्राप्त करते हुए उपराज्यपाल महोदय से, और अब उनके लिए भी एक गौरव का क्षण और अब वे वापस लौटते हुए।
0: प्रधान सिपाही संख्या 1682 श्री अमल कुमार दास, अंडमान तथा निकोबार पुलिस। आपने सन 1988 में अंडमान तथा निकोबार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवाएं प्रारंभ की तथा द्वीप समूह के विभिन्न स्थानों एवं इकाइयों में निष्ठा एवं दक्षता के साथ सेवाएं प्रदान की। आपने विभिन्न आपराधिक, स्थानीय एवं विशेष कानूनों से संबंधित मामलों की जाँच तथा कानून व्यवस्था संबंधी दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको 2 प्रशंसा प्रमाण पत्र श्रेणी 1 एवं 10 प्रशंसा प्रमाण पत्र श्रेणी 2 सहित नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। आपके 38 वर्षों के कार्यकाल के दौरान निष्कलंक सेवा, कर्तव्य निष्ठा, व्यावसायिक दक्षता एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को अंगीकार करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल महोदय आज इन्हें यह पदक प्रदान करेंगे। प्रधान सिपाही संख्या 1682 श्री अमल कुमार दास, अंडमान निकोबार पुलिस।
1: अंडमान निकोबार पुलिस के प्रधान सिपाही श्री अमल कुमार दास वे आगे आए और सैल्यूट पेश किया उपराज्यपाल महोदय को, और अब वे राष्ट्रपति के उत्कृष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए। यही वो

0: क्षण होता है जब किए गए कार्यों के प्रति लोगों को उत्साह बढ़ाया जाता है, और यही पल उनके लिए भी गौरव का क्षण है। और अब जो चार अधिकारियों को ये पुलिस राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया गया, और अब है उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से 19 लोगों या संस्थाओं को अलंकृत किया जाएगा।
1: प्रशासन अंडमान तथा निकोबार अभिलेखागार सचिवालय के उप भवन में कार्यरत है। इस अभिलेखागार द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व के अभिलेखीय रिकॉर्डों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार कार्यों की उल्लेखनीय पहल आरंभ की गई है। इस अभिलेखागार में अभिलेख पटल पोर्टल पर एक समर्पित डिजिटल रिपोजिटरी को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, जिससे शोधकर्ताओं, छात्रों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता के लिए अभिलेख संसाधनों की ऑनलाइन जानकारियां उपलब्ध हो रही है। इस अभिलेखागार द्वारा स्थानीय शिक्षा संस्थानों के इतिहास विषय के स्नातक विद्यार्थियों के लिए अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आरंभ करने का भी प्रस्ताव है, जिससे न केवल अभिलेखीय विज्ञान में कुशल मानव संसाधन विकसित होंगे, बल्कि डिजिटलीकरण और संरक्षण के प्रयास को और बल मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। द्वीपों के समृद्ध ऐतिहासिक दस्तावेजी धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए सचिवालय के अंडमान तथा निकोबार अभिलेखागार को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान तथा निकोबार अभिलेखागार सचिवालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन।
2: अंडमान तथा निकोबार अभिलेखागार सचिवालय, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए और मेडल भी प्राप्त करते हुए कुछ बातें उपराज्यपाल महोदय से करते हुए अपने स्थान की ओर बढ़ते हुए, और अब पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र का दल श्री विजयपुरम,
1: श्री एम के फारूक प्रवर श्रेणी लिपिक, सत्यापन अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय श्री विजयपुरम, श्री एस नेताजी प्रवर श्रेणी लिपिक, सत्यापन अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय श्री विजयपुरम। प्रवर श्रेणी लिपिक श्री एम के फारूक और श्री एस नेताजी वर्तमान में श्री विजयपुरम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में सत्यापन अधिकारी के पद पर कार्यरत है, और आप दोनों ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के निवासियों को निर्बाध पासपोर्ट सेवाएँ उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र के इस दल ने मीडिया के माध्यम से पासपोर्ट जागरूकता, पारदर्शी एवं नागरिक अनुकूल सेवा वितरण तथा शिकायत मुक्त सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन और पासपोर्ट सेवा दिवस 2026 के अवसर पर विदेश मंत्रालय द्वारा अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया। कार्य के प्रति निष्ठा, उल्लेखनीय उपलब्धि एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र के पासपोर्ट कार्यालय के दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एम के फारूक प्रवर श्रेणी लिपिक, सत्यापन अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय श्री विजयपुरम।
2: पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र का दल के पहले अधिकारी श्री एम के फारूक प्रवर श्रेणी लिपिक, सत्यापन अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय श्री विजयपुरम, अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर।
1: प्रवर श्रेणी लिपिक, सत्यापन अधिकारी पासपोर्ट कार्यालय श्री विजयपुरम।

0: इसके बाद
1: श्री
0: नेताजी
1: मोहम्मद परवेज
0: जो है वो
1: महाप्रबंधक
0: लेते हुए
1: परियोजना अनिटको श्री विजयपुरम। श्री मोहम्मद परवेज अनिटको में महाप्रबंधक परियोजना के पद पर कार्यरत है। आपने इस द्वीप समूह में अनिटको पर्यटन तथा रणनीतिक महत्व के सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपने ग्रेट निकोबार परियोजना के समग्र विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण रणनीतिक विकास परियोजना के लिए वित्तीय प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपने द्वीपों के नौकायन को बढ़ावा देने के लिए एक नौकायन विकास

0: कार्यक्रम आरंभ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुशल नेतृत्व, विशिष्ट कार्यशैली एवं उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए अनिटको के महाप्रबंधक परियोजना श्री मोहम्मद परवेज को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री मोहम्मद परवेज, महाप्रबंधक परियोजना अनिटको, श्री विजयपुरम।
1: श्री मोहम्मद परवेज, महाप्रबंधक परियोजना अनिटको, श्री विजयपुरम। उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए बहुत ही गौरव का क्षण उनके लिए। कुछ बातें करते हुए उपराज्यपाल महोदय के साथ और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर।
0: वन विभाग वन्य प्राणी प्रभाग माया बंदर, श्री सौ मनाशय, पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर वन्य प्राणी प्रभाग माया बंदर, श्री सौ एस सी थॉमस, पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर वन्य प्राणी प्रभार माया बंदर। इंटरव्यू आइलैंड वन्य जीव अभियान वन विभाग माया बंदर के बचाव दल के सदस्यों में 14 फरवरी 2026 को माया बंदर के निकट समुद्र में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान यात्रियों की जान बचाकर अपनी निस्वार्थ सेवा भावना, सूझबूझ और असाधारण साहस का परिचय दिया है। वन विभाग माया बंदर के इस बचाव दल के सदस्य 24 फरवरी 2026 को जब बोट में सवार होकर अपना गार्ड ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी दल ने माया बंदर के गोबी धोबी डेरा के पास समुद्र में एक हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। दल ने तुरंत ही अपने असाधारण साहस, निस्वार्थ सेवा एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी बोट को दुर्घटना स्थल की ओर मोड़ दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत ही बचाव अभियान में लग गए। इस दल के सदस्यों ने 3 महिला, 1 पुरुष तथा 1 बच्चे की जान बचाई और उन्हें सुरक्षित रूप से अपनी बोट में माया बंदर जट्टी पहुंचाया और आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने में मदद की। असाधारण साहस, सूझबूझ एवं निस्वार्थ सेवा की भावना को अंगीकार करते हुए वन विभाग माया बंदर के बचाव दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री सौ मनाशे, पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर, श्री सौ एस सी थॉमस, पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर वन विभाग माया बंदर।
2: वन विभाग का बचाव दल वन्य प्राणी विभाग माया बंदर, इसकी ओर से 2 लोगों को दिया जा रहा है ये प्रशस्ति पत्र। श्री सौ मनाशय, जो पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं, कुछ माह पूर्व आपने नोटिस किया था होगा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी माया बंदर के निकट समुद्र में। वहाँ पर उन्होंने बचाव कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से लोगों की जान बच सकी और अब वे अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए उपराज्यपाल महोदय से कुछ बात भी कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय उनकी इन गाथा को सुनते हुए बहुत ही करतल ध्वनि के साथ तालियाँ बजी है उनके साहस के लिए। अब अगले हैं श्री सौ एस सी थॉमस,
0: पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर वन्य प्राणी प्रभार माया बंदर।
2: ये जांबाज भी पूर्व दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं वन्य प्राणी प्रभाग माया बंदर में। इन दोनों के लिए बहुत जोरदार तालियां यहाँ पर बजी हैं। जाहिर है इतने अच्छे नेक कार्यों के लिए यहाँ पर जान बचाई जाती हो मुसीबत में घिरे लोगों के लिए तो एक बहुत ही अच्छी बात होती है। उनके लिए भी एक अच्छा उत्साहपूर्वक एक माहौल बना है यहाँ पर। उपराज्यपाल महोदय उनसे कुछ बात करते हुए, उनकी दास्तां सुनते हुए गौरव का क्षण इन दोनों मजदूरों के लिए, दोनों जाबाज लोगों के लिए। और अब हैं यार्ड कमांडर NSRY इकाई श्री विजयपुरम।
0: कमांडर नासिर अजीज, कमांडर ऑफ द यार्ड NSRY, श्री विजयपुरम के NSRY इकाई द्वारा द्वीप समूह में जलयानों की आवाजाही और सुचारू संचालन के लिए समर्पित रूप से 2400 घंटे परिचालन एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह इकाई श्री विजयपुरम और सभी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पर जहाजों एवं पनडुब्बियों के लिए बर्थ प्लानिंग एवं अनबर्थिंग बीचिंग सुविधा प्रदान करने तथा ईंधन एवं पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस इकाई ने जून 2025 से जून 2026 तक कुल 4500

12,000 लीटर ईंधन और 285 टन पेयजल की आपूर्ति करने के अलावा पत्तन प्रबंधन बोर्ड के 534 जहाजों, भारतीय नौसेना के जहाजों की 717 हॉट एवं 2,276 कोल्ड मूवमेंट्स तटरक्षक के 2,000 जहाजों की प्रचालन एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट कार्य कुशलता एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए यार्ड कमांडर नासिर अजीज, कमांडर ऑफ द यार्ड,

0: करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उत्कृष्ट कार्य कुशलता एवं समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए यार्ड कमांडर नासिर अजीज, कमांडर ऑफ द यार्ड NSRY को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कमांडर नासिर अजीज, कमांडर ऑफ द यार्ड NSRY।
1: यार्ड कमांडर NSRY इकाई श्री विजयपुरम, इसके दो अधिकारी उपराज्यपाल महोदय के समक्ष पहुंचे हैं और अब अपना प्रशस्ति पत्र, दोनों ही अधिकारी, जांबाज अधिकारी, अपना ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए उपराज्यपाल महोदय से कुछ बातें भी हो रही हैं। बहुत ही बेहतरीन क्षण उनके लिए। इसके बाद हैं सुश्री अमृता मिंज, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री विजयपुरम। इन अधिकारियों से उपराज्यपाल महोदय कुछ बातें करते हुए, दोनों ही काफ़ी खुश, जाहिर है बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण होता है ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना। और वहाँ पर मौजूद फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर बिल्कुल पल पल की एक एक क्षण को अपने कैमरे में कैद करते हुए।
2: सुश्री अमृता मिंज, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री विजयपुरम। सुश्री अमृता मिंज इस द्वीप समूह की एक प्रतिभावान रोइंग एथलीट है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल कर देश के साथ साथ इन द्वीपों का भी नाम रोशन किया है। आपने थाईलैंड के पटाया में आयोजित एशियन बीच स्प्रिंट 2026 में भाग लिया। आपने गोवा में आयोजित प्रथम बीच स्प्रिंट राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2026, केरल के साई NCOE में आयोजित इंडोर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2025 में एक एक स्वर्ण पदक हासिल की। इसके अलावा आपने वियतनाम के हाईफोंग में आयोजित सीनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पांचवां स्थान और पुणे में आयोजित 41वीं सीनियर राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2024 में चौथा स्थान प्राप्त कर अपने असाधारण खेल प्रतिभा एवं दृढ़ता का प्रदर्शन दिया है। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र की एथलीट रोइंग सुश्री अमृता मिंज को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री अमृता मिंज, एथलीट रोइंग।
3: सुश्री अमृता मिंज, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए। और अब सुश्री हरिप्रिया, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र। उपराज्यपाल महोदय उनसे कुछ बातें कर रहे हैं और जान रहे हैं उनके विषय में।
2: हरिप्रिया, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री विजयपुरम। सुश्री बी हरिप्रिया इन द्वीपों की प्रतिभावान रोइंग एथलीट हैं। आपने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल कर इन द्वीपों का नाम रोशन किया है। आपने प्रथम ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2026 एवं 8वीं इंटरस्टेट चैलेंजर एवं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2025 तथा तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित अस्मिता महिला अंडर 19 रोइंग लीग 2025 में एक एक रजत पदक हासिल कर इन द्वीपों का गौरव बढ़ाया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र की एथलीट रोइंग सुश्री बी हरिप्रिया को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री बी हरिप्रिया, एथलीट रोइंग।
3: सुश्री बी हरिप्रिया, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र, अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए। लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया और कैमरामैन पल पल की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए। इसके बाद हैं सुश्री बी हरिता, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र।
1: खेलों की दुनिया में ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। द्वीपों का नाम तो रोशन होता ही है बल्कि पूरे देश

0: का नाम भी रोशन होता है। और आज के खास दिन पर ऐसे अपने प्रशस्ति पत्र प्राप्त करना उनके लिए गौरव का क्षण है।
1: सुश्री बी हरिता, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल प्रशिक्षण केंद्र श्री विजयपुरम। सुश्री बी हरिता इन द्वीपों की प्रतिभावान रोइंग एथलीट हैं। आपने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल कर इन द्वीपों का नाम रोशन किया है। आपने प्रथम ऑल इंडिया इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2026 एवं 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर एवं राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप 2025 तथा तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित अस्मिता महिला अंडर 19 रोइंग लीग 2025 में एक एक रजत पदक हासिल कर इन द्वीपों का गौरव बढ़ाया। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र की एथलीट रोइंग सुश्री बी हरिता को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री बी हरिता, एथलीट रोइंग।
2: सुश्री बी हरिता, एथलीट रोइंग, भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण केंद्र, अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए उपराज्यपाल महोदय उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हुए और उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया, बहुत ही गौरव का क्षण। और उसके बाद है सुश्री अलास्का एलिना भारोत्तन,
1: सुश्री अलास्का एलिना,
2: एथलीट, भारतीय खेल प्राधिकरण,
1: भारतीय खेल प्राधिकरण खेल प्रशिक्षण केंद्र कार्निकोबार। सुश्री अलास्का एलिना कार्निकोबार के चुकचुका गांव की प्रतिभावान वेटलिफ्टिंग एथलीट है। आप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की पहली महिला वेटलिफ्टर हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर वेटलिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में पदक हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ है। आपने केरल के त्रिशूर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया रैंकिंग महिला लीग चैंपियनशिप साउथ जोन 2025 के सीनियर महिला 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक और छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रथम संस्करण खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में सीनियर महिला 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इन द्वीपों का नाम रोशन किया है। उत्कृष्ट खेल प्रतिभा को अंगीकार करते हुए कार निकोबार स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र की वेटलिफ्टिंग एथलीट सुश्री अलास्का एलिना को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री अलास्का एलिना, वेटलिफ्टिंग एथलीट।
0: कार्निकोबार स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र भारतीय खेल प्राधिकरण की सुश्री अलास्का एलिना, जो कि भारोत्तोलन एथलीट हैं, आगे आई, उपराज्यपाल महोदय को नमस्कार किया और उपराज्यपाल महोदय से अपना ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए उपराज्यपाल महोदय उनके बारे में बातें करते हुए उनसे। और अब अगले हैं सुश्री शांता सेंट्रिक, निकोबार लोक नृत्य कलाकार।
1: लोक नृत्य कलाकार कार निकोबार। सुश्री शांता सेंट्रिक निकोबारी लोक नृत्य की एक प्रतिष्ठित कलाकार है। आपने इस पारंपरिक कला का सक्रिय रूप से प्रदर्शन, संरक्षण तथा प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपके अथक प्रयासों से इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को युवा पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने और प्रसारित करने में उल्लेखनीय योगदान मिला है। आपके असाधारण समर्पण और कलात्मक उत्कृष्टता को देखते हुए संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2025 के लिए आपको उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निकोबारी लोक नृत्य के संरक्षण और संवर्धन में किए गए उत्कृष्ट योगदान को अंगीकार करते हुए कार निकोबार के निकोबारी लोक नृत्य कलाकार सुश्री शांता सेंट्रिक को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। सुश्री शांता सेंट्रिक निकोबारी लोक नृत्य कलाकार कार निकोबार।
0: कार निकोबार की निकोबारी लोक नृत्य कलाकार सुश्री शांता सेंट्रिक आगे आई, नमस्कार किया उपराज्यपाल महोदय को और अब अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करती हुई। जाहिर है कि संस्कृति को अपना बनाए रखने के लिए उसे प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है और यही वो कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा का एक अनोखा मिसाल पेश करते हैं। उपराज्यपाल महोदय उनसे कुछ जानते हुए बातें करते हुए। इसके बाद हैं श्री जोनाथन, अध्यक्ष जनजातीय परिषद।

0: प्रतिशत चौरा द्वीप। जी हाँ, चौरा द्वीप भी हमारे बहुत ही करीब हैं और हम यहाँ के लोगों से काफ़ी इत्तेफाक रखते हैं।
1: श्री जोनाथन, अध्यक्ष जनजातीय परिषद चौरा द्वीप। श्री जोनाथन 29 जनवरी 1994 से चौरा द्वीप के जनजातीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने चौरा द्वीप में दुर्लभ संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों के बीच दीर्घकालिक लाभ के लिए संधारणीय प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने कुशल नेतृत्व, समर्पण और उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए अपने समुदाय के कल्याण के लिए बिजली की बचत और इसके कुशल प्रबंधन के लिए अपनी दूरदर्शी सोच और स्वैच्छिक पहल से चौरा द्वीप में प्रतिदिन 24 घंटे के बजाय 21 घंटे विद्युत आपूर्ति का समर्थन किया, जिसके कारण हाई स्पीड डीजल की बचत संभव हो पाई है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, कुशल नेतृत्व और सरकारी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग के प्रोत्साहन के लिए गए उल्लेखनीय योगदान को अंगीकार करते हुए चौरा द्वीप के जनजातीय परिषद के अध्यक्ष श्री जोनाथन को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री जोनाथन, अध्यक्ष जनजातीय परिषद चौरा द्वीप।
0: चौरा द्वीप के जनजातीय परिषद के अध्यक्ष श्री जोनाथन जी आगे आए, उन्होंने दूर से ही नमस्कार किया उपराज्यपाल महोदय को और करीब आकर उन्होंने अपना ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। बहुत ही गौरव का क्षण, इतने दूर दराज के द्वीपों में रहते हैं लेकिन अपना कर्तव्य के प्रति निष्ठा वो कभी नहीं भूलते और अपना कार्य करते हैं, जिनका ये फल उन्हें मिलता है। अब वन विभाग के डाइविंग दल की बारी है।
1: श्री मोहम्मद हुसैन, फॉरेस्टर, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। वन विभाग के डाइविंग दल ने सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के पर्यवेक्षण में राधानगर समुद्र तट के पास समुद्र के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व एवं समन्वय का परिचय देते हुए 2 और 3 मई 2026 को समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और समुद्र के भीतर सबसे ऊंची मानव स्केटिंग बनाने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की योजना बनाने, इसकी तैयारी करने और इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने में विशेष भूमिका निभाई। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए वन विभाग की डाइविंग दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रशस्ति पत्र ग्रहण करेंगे मोहम्मद हुसैन, फॉरेस्टर, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रिसर्च एंड सर्वे रेंज, वंडूर।
0: मोहम्मद हुसैन, वन विभाग के ये जाबाज अधिकारी, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया उन्होंने और उसके लिए आज उन्हें प्रशस्ति पत्र से नवाजा जा रहा है। उपराज्यपाल महोदय ने उन्हें ये भेंट किया अपना प्रशस्ति पत्र। और अब अगले हैं अंडमान निकोबार पुलिस मरीन बल का डाइविंग दल।
1: अंडमान निकोबार पुलिस मरीन बल के डाइविंग दल ने 2 और 3 मई 2026 को राधानगर समुद्र तट के पास समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और समुद्र के भीतर सबसे ऊंची मानव स्केटिंग बनाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की योजना को निष्पादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दल के सदस्यों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार समुद्र के भीतर सावधानीपूर्वक डाइविंग योजना बनाने, डाइवर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने, समुद्र के भीतर पोजिशनिंग सिस्टम, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय और दस्तावेजीकरण प्रतिक्रियाओं को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए अंडमान निकोबार पुलिस मरीन बल के डाइविंग दल को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगे श्री गिरीश कुमार, इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पुलिस मरीन फोर्स हेडक्वार्टर, श्री विजयपुरम।
2: अंडमान निकोबार पुलिस मरीन बल का डाइविंग दल, जी हाँ श्रोताओं, ये अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए, गत दिनों में हमने देखा कि राधानगर समुद्र तट के पास उन्होंने सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज फहराया और वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। अंडमान

0: निकोबार कमांड डाइविंग दल, अंडमान निकोबार कमांड डाइविंग दल ने 2 मई 2026 को स्वराज द्वीप में समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम के सफल निष्पादन में असाधारण पेशेवर क्षमता, उत्कृष्ट कार्यकुशलता एवं अनुकरणीय परिचालन प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस इकाई ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के इस आयोजन के लिए डाइविंग सुरक्षा, समुद्र के भीतर के प्रबंधन, जोखिम को कम करने के उपायों और पर्यावरणीय आकलन के बारे में दल के सभी सदस्यों को महत्वपूर्ण तकनीकी सलाह प्रदान किया, जिसके कारण कड़े सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सका। इसके अलावा इस इकाई ने छोलदारी बांध से मुख्य इनटेक पाइपलाइन को भी सफलतापूर्वक खोज निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के किए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए श्री विजयपुरम के अंडमान निकोबार कमांड डाइविंग टीम को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान निकोबार कमांड डाइविंग टीम।
1: अंडमान निकोबार कमांड डाइविंग इकाई श्री विजयपुरम, अपना प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए, गत दिनों में हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्र का सबसे बड़ा ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। और उसके बाद हैं कमांडर विक्रम एस भाटी, भारतीय नौसेना।
2: कमांडर विक्रम सिंह भाटी 05175 के कमांड स्पेशल ऑपरेशंस एंड डाइविंग ऑफिसर। भारतीय नौसेना सेना में कार्यरत कमांडर विक्रम सिंह भाटी ने 2 और 3 मई 2026 को अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के तत्वाधान में आयोजित समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और समुद्र के भीतर सबसे ऊंची मानव स्टैक बनाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप 2024 से इस आयोजन की संकल्पना एवं योजना के प्रारंभिक चरण से लेकर मई 2026 में इसके सफल समापन तक इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। आपके व्यावसायिक कार्यकुशलता, नेतृत्व, निरंतर सहभागिता एवं समर्पित प्रयासों के कारण समुद्र के भीतर की गई गतिविधियों के सफल निष्पादन में उल्लेखनीय सहायता प्राप्त हुई। आपके इन सराहनीय प्रयासों से अंडमान एवं निकोबार कमांड की प्रतिष्ठा एवं गौरव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किए गए उनके बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए भारतीय नौसेना के कमांडर विक्रम सिंह भाटी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। कमांडर विक्रम सिंह भाटी 05175 के कमांड स्पेशल ऑपरेशंस एंड डाइविंग ऑफिसर।
1: कमांडर विक्रम एस भाटी, भारतीय नौसेना, अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए उपराज्यपाल महोदय का प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए सलामी पेश किया और प्रशस्ति पत्र स्वीकार करते हुए बहुत ही गौरव का क्षण उनके लिए। और अब इसके बाद है श्री रुस्तम अली, रिसेप्शनिस्ट, सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय।
2: श्री रुस्तम अली, रिसेप्शनिस्ट, सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय। श्री रुस्तम अली सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत हैं और आप एक प्रमाणित ओपन वाटर स्कूबा डाइवर भी हैं। आपने 2 और 3 मई 2026 को हासिल किए गए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने और सबसे ऊंचा मानव स्टैक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके नेतृत्व में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार समुद्र के भीतर सावधानी पूर्वक डाइविंग योजना बनाने, डाइवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने, समुद्र के भीतर पोजीशनिंग सिस्टम, सुरक्षा शिष्टाचार, आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय और दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करने के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय

0: रिसेप्शनिस्ट श्री रुस्तम अली को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री रुस्तम अली रिसेप्शनिस्ट सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय।
1: सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के श्री रुस्तम अली जो रिसेप्शनिस्ट हैं, उन्होंने अपना ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया उपराज्यपाल महोदय के करकमलों के द्वारा। बहुत ही गौरव का क्षण है उनके लिए। अब अगले श्री रतीश दिवाकर कुलकर्णी,
0: स्कूबा डाइव इंस्ट्रक्टर, डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री रतीश दिवाकर कुलकर्णी डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्कूबा डाइव अनुदेशक हैं। आपने 3 मई 2026 को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में समुद्र के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्टैक बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कीर्तिमान हासिल करने के लिए इसके सफल आयोजन में असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता, तकनीकी क्षमता और अटूट समर्पण की भावना का प्रदर्शन किया है। आपके विशिष्ट कार्यशैली, टीम वर्क की भावना और डाइवरों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में काफ़ी मदद मिली, जिससे इस द्वीप समूह को राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्कूबा डाइव अनुदेशक श्री रतीश दिवाकर कुलकर्णी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री रतीश दिवाकर कुलकर्णी, स्कूबा डाइव इंस्ट्रक्टर, डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
1: श्री रतीश दिवाकर कुलकर्णी, स्कूबा डाइव अनुदेशक, डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इस शख्स ने बेहतरीन काम किया, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। अब नेक्स्ट श्री हार्दिक नितिन दतनवाला,
0: पैडी कोस्ट डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री हार्दिक नितिन दतनवाला पैडी पाठ्यक्रम के निदेशक एवं डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी हैं। आपने 3 मई 2026 को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आयोजित समुद्र के भीतर सबसे ऊंचा मानव स्टैक बनाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने अपनी असाधारण व्यावसायिक कार्यकुशलता, तकनीकी दक्षता और समर्पण की भावना का परिचय देते हुए इस आयोजन के प्रतिभागी डाइवरों के साथ समन्वय, समुद्र के भीतर सही स्थिति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और अभ्यास कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समुद्र के भीतर सबसे बड़ा मानव स्टैक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में किए गए बहुमूल्य योगदान को अंगीकार करते हुए पैडी पाठ्यक्रम के निदेशक एवं डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी श्री हार्दिक नितिन दतनवाला को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री हार्दिक नितिन दतनवाला पैडी कोस्ट डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
1: डाइव अंडमान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पाड़ी पाठ्यक्रम निदेशक एवं मुख्य संचालन अधिकारी श्री हार्दिक नितिन दातनवाला आगे आए। उन्होंने उपराज्यपाल महोदय को नमस्कार किया और अपना यह प्रशस्ति पत्र हासिल करते हुए। अब है परामर्शदाता शल्य चिकित्सक डॉक्टर सजी वर्गीस,
0: परामर्शदाता शल्य चिकित्सक एवं प्रोफेसर, जीबी पंत अस्पताल, श्री विजयपुरम। डॉक्टर सजी वर्गीस श्री विजयपुरम स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर एवं जीबी पंत अस्पताल के सामान्य मिनिमल एक्सेस सर्जरी विभाग में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं। आपने द्वीप समूह में आधुनिक शल्य चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में उल्लेखनीय एवं सराहनीय योगदान दिया है। आपने विगत 20 वर्षों के दौरान वयस्कों एवं बच्चों की 11,750 से भी अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं संपन्न की है तथा दूरस्थ एवं दुर्गम द्वीपों में निशुल्क शल्य चिकित्सा शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान की है। आपने सर्वसमावेशी एवं समान स्वास्थ्य सेवा की भावना से किसी भी नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा से वंचित ना होने देने के संकल्प के साथ अपने कार्यों के माध्यम से सेवा परमो धर्म

0: की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यावसायिक कार्यकुशलता तथा जनसेवा के प्रति समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए जीबी पंत अस्पताल श्री विजयपुरम के परामर्शदाता शल्य चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉक्टर सजी वर्गीस को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सजी वर्गीस परामर्शदाता शल्य चिकित्सक एवं प्रोफेसर जीबी पंत अस्पताल श्री विजयपुरम।
1: श्री विजयपुरम के जीबी पंत अस्पताल के परामर्श शल्य चिकित्सक एवं प्रोफेसर डॉक्टर साजी वर्गीस, एक बेहतरीन कर्मठ चिकित्सा अधिकारी जिन्हें हर लोग यहाँ पर नमन करते हैं, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं इन दिनों, और इस प्रकार उन्होंने ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया और वापस जाते हुए
2: वीपो के माननीय
1: प्रशस्ति पत्र का सिलसिला अब यहाँ पर संपन्न हुआ
2: संबोधित करेंगे।
1: और अब उपराज्यपाल महोदय का द्वीपवासियों के नाम संदेश।

मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं और उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर विकसित भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले 8-9 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी परियोजनाओं के तहत 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में हुआ, जिनमें 54 में से 15 पूरी हो चुकी हैं तथा बाकी शीघ्र ही ऑपरेशनल होने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 92,000 करोड़ के निवेश से महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना, जिसमें नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना प्रस्तावित हैं, मुख्यतः पीपीपी मॉडल के तहत की जा रही हैं, जो द्वीपों को एक इकोनॉमिक हब बनाने और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगे। इसी दिशा में 14,000 करोड़ की लागत वाले ग्रेट निकोबार आइलैंड हवाई अड्डे का लेटर ऑफ इंटेंट लगभग 300 करोड़ के निवेश से एक कंसल्टिंग एजेंसी को जारी कर दिया गया है, जो कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करेगी। साथ ही आईसीटीपी की डीपीआर और टाउनशिप का अपडेटेड मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है तथा पावर प्लांट का पावर परचेज अग्रीमेंट हस्ताक्षर किया जा चुका है। साथ ही श्री विजयपुरम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए फाइनल साइट सिलेक्शन व लिडार सर्वे के बाद आगामी प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं। एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु उड़ान के तहत श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए स्पाइस जेट और मह एयर प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है। साथ ही फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के लिए शिवपुर तथा कार निकोबार में यात्री टर्मिनल तैयार हैं तथा कैंबल बे में निर्माण अंतिम चरण पर है। वर्ष 2025 में 8 लाख से ऊपर पर्यटकों का द्वीपों में आगमन हुआ, जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस साल की प्रथम छमाही में ही द्वीप समूह की कुल जनसंख्या से अधिक लगभग 4.5 लाख पर्यटक यहाँ आ चुके हैं, जो कि गत वर्ष से लगभग 15% अधिक है। क्रूज टूरिज्म

में भी तेजी आई है और वर्ष 2025-26 में 3 क्रूज शिप से लगभग 1200 पर्यटकों का आगमन हुआ था। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि 2 और 3 मई को राधानगर बीच पर समुद्र के नीचे 2400 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तथा 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर 2 स्कूबा डाइविंग गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित किए गए और परसों ही इसके सभी पार्टिसिपेंट्स को व्यक्तिगत गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स व मेडल्स दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हमारे द्वीप समूह की वैश्विक स्कूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सर्फिंग महोत्सव के अंतर्गत आयोजित लिटिल एंडमान प्रो 2026 ने लिटिल एंडमान को वैश्विक प्रीमियर हाई वैल्यू सर्फिंग तथा एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दी है। पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज हेतु लॉन्ग आइलैंड, एवीस आइलैंड, शहीद द्वीप तथा मेगापोर्ट रिजॉर्ट में 5-स्टार इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स के विकास हेतु पीपीपी समझौते निष्पादित हो चुके हैं। साथ ही रंगाचांग में 18-होल गोल्फ कोर्स, हॉर्नबिल एस्टेट में 5-स्टार रिजॉर्ट्स तथा बिजनेस होटल तथा राधानगर में बुटीक रिजॉर्ट्स, एडवेंचर पार्क तथा ग्लैम्पिंग के लिए पीपीपी मॉडल पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार हैं तथा शीघ्र ही इनकी आरएफपी जारी कर दी जाएगी। विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3 समुद्र तटों, रमन बगीचा, कर्माथांग तथा रामनगर को ब्लू फ्लैग पायलट स्टेटस भी प्राप्त हुआ है और पूर्ण ब्लू फ्लैग स्टेटस इसी वर्ष मिलने का लक्ष्य है। आईडीए के अंतर्गत द्वीपों के डी डीजलाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप 50 मेगावाट एलएनजी आधारित पावर प्लांट 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रस्तावों के फलस्वरूप फ्लोटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना हेतु बीएआरसी इत्यादि और विद्युत मंत्रालयों के विशेषज्ञों की इसी माह आगमन पर फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। वर्ष 2017-18 से हमारे निरंतर प्रयासों के चलते तथा इस विषय को आईडीए की 5वीं तथा 6ठी मीटिंग्स के एजेंडा में सम्मिलित करने के फलस्वरूप लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर नो गो जोन क्षेत्र को ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। समुद्र मंथन के पहल के तहत अंडमान बेसिन में डीप वाटर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को नई गति प्राकृतिक गैस की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे के अन्वेषण एवं आकलन से अंडमान क्षेत्र को प्राकृतिक गैस तथा ऑफशोर एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगभग 350 करोड़ की 11 प्रमुख परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 20 इलेक्ट्रिकल बसेस, 42 KLD फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, मरीन रोड पुनर्निर्माण और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर सेंटर व पार्क्स सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्बिन्स कोव बीच डेवलपमेंट, वर्किंग वेमेंस हॉस्टल तथा मरीन एस्प्लेनेड परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 32 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स तथा माया बंदर के इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिशिंग हार्बर को लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अटलांटा बे दिगलीपुर में डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट के लिए आईआईटी चेन्नई द्वारा

0: फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता के माध्यम से टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा बिजनेस प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका अंतिम रूप अगले माह ही अपेक्षित है। श्री विजयपुरम में यॉट मरीना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद निजी क्षेत्र से रुचि प्राप्त हुई है और 10 से 15 हेक्टेयर वाटर फ्रंट भूमि की पहचान इसके लिए की जा रही है। सी कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने तथा पुराने जहाज़ों को बदलने के हेतु प्रशासन 11 नए जहाज़ों की खरीद कर रहा है। साथ ही अगले 2-3 वर्षों में 29 जहाज़ों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चार्टर पर लेने हेतु शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ MOU अंतिम चरण में है। इस वर्ष 3 हार्बर फेरी के अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग आइलैंड और दिगलीपुर में तैयार हो चुकी हैं और तीसरी अक्टूबर नवंबर तक तैनात होने की संभावना है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत परिवारों के समावेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी इच्छुक क्षय रोगियों को निक्षय मित्र सहायता से जोड़ा गया है तथा 14 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2026 में द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक अर्जित किए। इनमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भारोत्तोलन में 1 कॉपर, अस्मिता विमेंस लीग तथा विभिन्न रोइंग चैंपियनशिप्स में 1 गोल्ड, 5 सिल्वर तथा 11 कांस्य पदक सम्मिलित हैं। इसी प्रकार एशियन साइकिल चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर पदक हासिल किया गया है। यह उपलब्धि द्वीप समूह में खेल प्रतिभाओं के निरंतर विकास तथा राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। अंत में परेड में की टुकड़ियों तथा स्कूली बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी अवार्डीज को बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं सिंकैन के नेतृत्व मंडान तथा कमांड के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, DGP व PCCF के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं तथा विभिन्न संगठनों के उन जनप्रतिनिधियों तथा समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों का, जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अंडमान तथा नीव निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद।
1: उपराज्यपाल महोदय का
2: और अब आइए हम सब राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के लिए सम्मानपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
1: इसके लिए सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो गए हैं सम्मान में।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के साथ ही अब यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त हो चला है। उपराज्यपाल महोदय यहाँ से अपने लोक निवास की ओर प्रस्थान करते हुए सभी ने दूर से ही उन्हें नमस्कार किया, उनका अभिवादन किया। अब वे मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए यहाँ पर सलामी गारद बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। कुल 27 टुकड़ियाँ हैं जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक, अंडमान निकोबार पुलिस, IRBN, स्कूली बच्चे, फॉरेस्ट विभाग की टुकड़ी, स्काउट और गाइड की टुकड़ी, सी कैडेट कोर आदि शामिल हैं। बहुत ही मुस्तैदी के साथ सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हैं। उपराज्यपाल महोदय अब यहाँ से जा चुके हैं। लोगों का यहाँ से पलायन भी अब शुरू हो गया है धीरे धीरे जाते हुए। आपको बता दें कि बहुत ही खुशनुमा माहौल, कोई बहुत ज़ोरदार गर्मी यहाँ पर नहीं, हवाएं चलती हुई, और इसी हवा में मंद मंद हमारा राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेडियम धीरे धीरे

0: खाली होता हुआ, लोग अपने निर्धारित स्थानों की ओर प्रस्थान करते हुए। तो आज के बातों की अगर हम चर्चा करें तो उपराज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही हैं, कई विकास के कार्यक्रम हैं जो पूरे हुए हैं और जो अब चल रहे हैं और जो आने वाले कई विकास कार्य हैं उन्हें अंजाम भी दिया जाना है। यानी कह सकते हैं कि द्वीप समूह भी पूरे देश के साथ विकासीय गतिविधियों में शामिल हो चुका है। कई खेलकूद की गतिविधियों की भी उन्होंने चर्चा की। तो सीमा, एक एक करके हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को भी कुछ बातें बताएं। आप क्या कहना चाहती हैं शुरुआत में?
1: तो जैसा कि उपराज्यपाल महोदय ने बहुत सारी योजनाओं को हमारे द्वीपवासियों के लिए आज प्रस्तुत किया, उसमें से पहले मैं अगर याद कर पाती हूँ तो ग्रेट निकोबार हवाई अड्डे के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि उनका कार्य लगभग समापन की ओर है और इस हवाई अड्डे से ग्रेट निकोबार के जो और उसके आसपास के जो द्वीप हैं उनको काफ़ी हद तक बुनियादी सुविधाएं और कह सकते हैं मेडिकल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें उनको जल्दी मिलेगी। आपका क्या कहना है इस विषय में?
0: जी जी हाँ बिल्कुल, यानी कि कनेक्टिविटी जो है बढ़ जाए तो फिर तो सभी द्वीप बहुत करीब आ जाएंगे, विकास की गतिविधियां वहां तक भी बेरोक टोक जो है पहुँच सकेंगी। और उपराज्यपाल महोदय ने ग्रीन फील्ड एयरफील्ड जो है उनकी भी बात की, ताकि एयर कनेक्टिविटी भी बनी रहे, ताकि आइलैंड एक दूसरे से जुड़ जाएं, ताकि विकास की गतिविधियों में हमारे बाकी द्वीप भी शामिल हो जाएं।
1: बिल्कुल, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के लिए शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के पे बहुत जोर दिया है। तो यहाँ पर उनकी एयर कनेक्टिविटी सुदृढ़ की जाएगी और साथ ही यात्री टर्मिनल की बात की गई शिवपुर की, जहाँ पर काफ़ी सारे काम समापन की ओर है और इससे भी हमारे द्वीप को और द्वीपवासियों को काफ़ी लाभ होगा। और पर्यटन के बारे में भी उन्होंने बहुत जोरदार उनके ऊपर में भी कहा, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी तक 15% से अधिक इन 6 माह में मतलब जो पर्यटक होते हैं हमारे इस द्वीप समूह में आ चुके हैं और अभी जैसे सीज़न का समय होगा तो फिर हम उसमें और बहुत सारी योजनाओं को भी उन्होंने बताया पर्यटन के बारे में भी और टूरिज़्म को किस तरह से और बढ़ावा देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा द्वीप मैक्सिमम पर्यटन के ऊपर में डिपेंडेंट है, काफ़ी सारे लोग उसमें डिपेंडेंट है, तो उसके ऊपर में भी काफ़ी हद तक और अच्छे कार्य करने की उन्होंने बात की।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और राधानगर बीच के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा है कि जो पिछले दिनों समुद्र के भीतर बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि हासिल हुई, जब भारतीय तिरंगा जो है वो समुद्र के भीतर पूरी तरह से लोगों के निगाह के सामने आया और मानव श्रृंखला भी बनी, यानी कि बहुत सारी गतिविधियां वहां पर हुई जो कि राष्ट्र को गौरवान्वित करता है। इसी तरह स्कूबा डाइविंग और पर्यटन से क्षेत्र में जितनी भी उपलब्धियां हैं उन्होंने उनकी चर्चा की है। यानी कुल कह सकते हैं कि हमारा जो द्वीप है वो विकास की ओर बिल्कुल गतिमान है। और यहाँ के बारे में आपको बता दें श्रोताओं कि सलामी गारद अब भी बाकायदा खड़ी हुई है और धीरे धीरे अब वो भी यहाँ से निकल जाएंगी। तो आज का दिन बहुत ही खुशनुमा है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अब अभी भी कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि कितना खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है जो कि आज़ादी की हमारी कई सारी बातों की याद दिलाता है इतिहास के बारे में।
1: जी बिल्कुल जाकिर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस योजना में जो हमारे उपराज्यपाल महोदय ने खिलाड़ियों के बारे में भी उन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी, जैसा कि आपने सुना 15 पदक हमारे द्वीप के जो खेल खिलाड़ी से जुड़े लोग हैं उन्होंने प्राप्त किया है और सच में ये हमारे द्वीप के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है और इससे और भी जो बच्चे देखेंगे और वो प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आने वाले समय में और भी अधिक जो मेडल्स हैं हम प्राप्त करेंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और इस वक्त आप बैंड की धुन सुन रहे हैं, यहाँ पर से जो टुकड़ियाँ हैं वो अब डिस्बर्स होती हुई निकल रही हैं हमारे दाहिने और बाहिने ओर के गेट से स्टेडियम की तरफ वापस आती हुई। बिल्कुल सही कहा सीमा, विकास की जो बयार बह रही है अब उसकी कोई सीमा नहीं
1: जी।
0: तो श्रोताओं, 80वें स्वाधीनता दिवस को

0: समर्पित द्वीप समूह का ये मुख्य समारोह अब समाप्त हो चला है। इसी सभी अतिथि नेताजी स्टेडियम से प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ देर पहले जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो बड़ी शान के साथ हवा में लहराता हुआ निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी धरती गई है सज, जब से लहराया है अपना ये राष्ट्रीय ध्वज। अब हम प्रण लेते हैं कि ये ध्वज यूं ही लहराता रहेगा, देश में आन बान और शान की याद दिलाता रहेगा। अब सीधे प्रसारण को हम यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबको 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको अपनी पूरी ओबी टीम के साथ आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं।
1: श्रोताओं, अभी आप स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ के सु अवसर पर श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित ध्वजारोहण समारोह एवं द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों के नाम संदेश का सीधा प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे जाकिर हुसैन और सीमा किरकिट्टा। तकनीकी सहयोग दिया समारोह स्थल से टी गणेश कुमार, बैजू मैथ्यू, शेख शाहिद और एन दंडपानी ने। नियंत्रण कक्ष से हिमांजलि ओझा, राजी रेवगीश्वरी, मधुस्मिता शियल और अनिमेश चंद्र रॉय। कार्यक्रम की संयोजक थी मीना प्रकाश तथा संपूर्ण प्रसारण के संयोजक थे सी सुब्बाराव। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:40 हुए हैं। श्रोताओं, अपनी पहली सभा को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत। भारत की मिट्टी में कुछ खास बात है, इसके कण कण में वीरों की सौगात है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है।

हिंदुस्तान हमारी पहचान है, इसकी मिट्टी पर हमें अभिमान है, भारत माँ के चरणों में हमारा सम्मान है, वतन की मिट्टी से रिश्ता पुराना है, इसके लिए हर दर्द मुस्कुराकर सह जाना है, भारत को हर हाल में आगे बढ़ाना है।

तिरंगे की शान कभी कम न होने देंगे, देश के सम्मान को कभी झुकने न देंगे, भारत की एकता को कभी टूटने न देंगे।

माँ के बाद जो सबसे प्यारा है वो मेरा भारत देश हमारा है, इसकी खुशहाली ही से सपना हमारा है। ना कोई जाति बड़ी ना कोई धर्म बड़ा, भारत से बढ़कर नहीं कोई रिश्ता खड़ा, एकता से ही देश बनेगा सबसे बड़ा।

श्रोताओं, अभी आप फिल्मी देशभक्ति गीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म फरिश्ते से। आनंद बख्शी के बोल को सुरों में पिरोया है बप्पी लहरी ने। गायक कलाकार है आशा भोसले और साथी।

लीजिए अब सुनिए रूप कुमार राठौर, हरभजन मान और मोहम्मद सलामत की आवाज़ों में फिल्म शहीद भगत सिंह का ये गाना। गीत रचना नक्श लयालपुरी का तथा संगीत जयदेव कुमार का है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म परमवीर चक्र का ये गाना, जिसे गाया था कुमार सानू, सुरेश वाडिकर, मोहम्मद अजीज और आशा भोसले ने। गीत व संगीत रविंद्र जैन का था। लीजिए अब सुनिए महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म फना का ये गाना। गीत प्रसून जोशी का तथा संगीत जतिन ललित का।

0: हेलो, मैं हूँ एचआईवी वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी एचआईवी जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू। स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
2: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
3: Let this March be grand to bring home your favorite SUV. Drive home the Maruti Suzuki Grand Vitara Strong Hybrid. Now at an effective price starting ₹11.93 lakh. Experience the revolutionary hybrid technology, premium comfort, advanced safety and a redefined drive only at Nexa. Plus, enjoy exciting benefits on the Grand Vitara Strong Hybrid. Make your upgrade smarter. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Nexa.
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
5: फसा। अनजान ऐप से बचें।
6: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और आदित्य नारायण की आवाजों में फिल्म दिलजले का ये गाना। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत अनु मलिक का है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम गीत अतीत।

0: पले चुप क्यों हो गए? और क्यों?
1: गीत है पूरब और पश्चिम फिल्म का, गायक कलाकार है महेंद्र कपूर और साथी, गीत इंदिवर की तथा संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को फिल्म बाजार में। कमर जलालाबादी के बोल को संगीत से सजाया है श्याम सुंदर ने।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर, उस नजर

0: हम से है, इज्जत वतन की हम से है, इंसान के हम।
1: श्रोताओं, अभी आप मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में नीरज की गीत रचना सुन रहे थे। संगीत SD बर्मन का था तथा फिल्म का नाम था प्रेम पुजारी। लीजिए अब सुनिए फिल्म यादों का मौसम का ये गाना। गायक कलाकार है विजय बेनेडिक व साथी गीत सलाउद्दीन परवेज का, संगीत आनंद मिलिंद का।

बनो फिर से गुलाम, एक दिल हम एक लौ हम एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे एक मगर तस्वीर है, जो हमें बांधे वो धागा है नहीं।

0: Recharge with plan voucher 2399 and receive an additional 47 days of validity, extending total plan validity from 3665 days to 412 days. New FTTH plan for monthly charge of 1199 month plus GST, providing speeds up to 200 Mbps.
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिल के साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा।

0: आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मुझे उनसे दोस्ती करना बहुत पसंद है जो जाने अनजाने एक से ज्यादा साथियों के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करते हैं। ये किसी भी तरह के सेक्स में कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो उन पर भी नजर बनाकर रखता हूँ जो अपने रेगुलर पार्टनर के साथ भी कॉन्डम नहीं लगाते और जो नशे की हालत में दोस्तों के साथ एक ही सुई व सिरिंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन छोटी छोटी लापरवाहियों से मुझे उनके पास आने का मौका मिल जाता है। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या?
1: Still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: విరామం తర్వాత కార్యక్రమానికి తిరిగి శ్రోతలందరికీ స్వాగతం. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇప్పుడు వినండి హరిగర్ తిరంగా.

चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिल के साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वीं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चेन्नई में 80वें स्वाधीनता दिवस पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सेंट जॉर्ज किला पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनता के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग बनाए हुए है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने कहा है कि राज्य संतुलित और समावेशी विकास की ओर अग्रसर है। आइजोल में स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री लाल दोहोमा ने कहा कि उनकी सरकार आत्मनिर्भर और विकसित मिजोरम बनाने तथा जनता की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यरत है। त्रिपुरा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा वीर विक्रम महाविद्यालय में विशेष देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। वंदे मातरम इन 1000 वॉयसेज नामक इस कार्यक्रम में 1300 से अधिक विद्यार्थियों, पूर्व विद्यार्थियों और शिक्षकों ने एक साथ वंदे मातरम का गायन किया। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल शुरू करनी थी। इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें भी ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट

टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने चायकाल तक एक विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। फिलहाल वर्षा के कारण खेल रुका हुआ है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हजार रुपए एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, 2 लाख रुपए एट द यूटी लेवल एंड 5 लाख रुपए एट द नेशनल लेवल. सेलिब्रेट योर रूट्स, इंस्पायर द नेशन. जेम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग.

अभी आप संवेद स्वरों में देश गान सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। गायक कलाकार है सोनू निगम, रूप कुमार राठौर। गीत रचना जावेद अख्तर की तथा संगीत अनु मलिक का है। गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजा है डॉलीगंज से सपना, सुजीता और समीर ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गाना।

अगले गीत के लिए हमें फरमाइश की है 11 चरामा से मंजू सोनी और राज ने। ये सुनना चाहते हैं फिल्म फना का ये गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने। प्रसून जोशी के गीत को शुरू में पिरोया है जतिन ललित ने।

मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में फिल्म नया दौर के गीत के लिए हमें फरमाइश भेजा है डेयरी फॉर्म से जगदीश, सुमित्रा और नैना ने। आइए सुनते हैं उनकी पसंद पर ये गाना, संगीत रचना ओपी नैयर का है।

लीजिए, अब सुनिए। बुनियादाबाद बात से फरमाइश भेजा है महेश और बेला ने। फिल्म है शोले, गायक कलाकार है किशोर कुमार और मन्ना डे, गीत आनंद बख्शी की तथा संगीत आर डी बर्मन का है। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

0: authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वरों में जावेद अख्तर की गीत रचना. संगीत संजीव कोहली का है तथा फिल्म का नाम है वीर जारा. पसंद करने वाले श्रोता है भातु बस्ती से नीना, नमिता और संजीव.

इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा

0: अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्रध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी, जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
5: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
2: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस
2: दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7

7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने एक विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई सूचना नहीं है। मछुआरों को मौसम संबंधी अनुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में वायु की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जिसके चलते समुद्र अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 18 तारीख तक समुद्र में ना जाए। ये था मौसम का हाल। इस समय दोपहर के 2:33 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: नॉन स्टॉप म्यूजिक।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

0: दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गाने आपको सुनवाए उनके नाम हैं दस, कर्मा, महबूब मेरे महबूब, तिरंगा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, उपकार, दिल तेरा दीवाना, लीडर, हिंदुस्तान की कसम और कोई मेरे दिल से पूछे। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: Non-stop music.

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। 3:30 हुए हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म भोज से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, अर्को और मनोज मुतशिर।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, मन्ना डे, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की मिलीजुली आवाज़ों में सुनते हैं एमजी हसमत की गीत रचना। संगीत सोनिक ओमी का है तथा फिल्म का नाम है फौजी।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रख रहे हमांग इंग रे तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्स रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग।

0: Hoi, hanga telang hangin ay sinta mo hik in hore changarok ita kasat ita fan ko ino at laharap. Nga iyan.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Entrepreneur क्या होता है? Who is an entrepreneur? उद्यमी कौन है? उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा में हुई है. एक उद्यमी वो होता है जो किसी उद्यम के जोखिम को व्यवस्थित, प्रबंधित और ग्रहण करता है. उद्यम एक उपक्रम है, विशेष रूप से एक जिसमें उत्पादन के न्यूनतम चार कारक अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल है. जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर एक व्यवसाय की कल्पना करता है, उपक्रम उद्यम स्थापित करने के लिए साहसिक निर्णय लेता है, उत्पादनों के विभिन्न कारकों को समन्वय करता है और इसे एक शुरुआत देता है. तो इसमें आर्थिक गतिविधि शुरू करने में जोखिम और नवाचार लेने की इच्छा शामिल है. उद्यमी व्यवसाय उद्यम के मालिक होते हैं जो पूंजी का निवेश योगदान करते हैं और व्यावसायिक जीवन के दौरान अनिश्चितताओं का जोखिम उठाते हैं. उद्यमी और उद्यम जुड़े हुए हैं. एक उद्यम की सफलता उद्यमी पर निर्भर करती है. वो एक्शन ओरिएंटेड और अत्यधिक प्रेरित है. उनके पास लाभ के लिए आवश्यक इनपुट संसाधन एकत्र करने के लिए व्यावसायिक अवसरों का मूल्यांकन करना और सफलता की गारंटी के लिए उचित कार्रवाई शुरू करने की क्षमता है. उद्यमी उत्पादन का मुख्य कारक है. वो नवचार उन्मुख है. वो उत्पाद के संबंध में निर्णय लेता है अर्थात

क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करें, कहाँ उत्पादन करें और उपभोक्ता कौन है या बाजार कहाँ है या किसके लिए उत्पादन करना है। ये उद्यमी है जो उत्पादन के सभी कारकों को जुटाकर उत्पादन प्रक्रिया शुरू करता है। यह व्यवसाय की सफलता या विफलता या लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक उद्यमी जिसके पास उच्च स्तर की प्रशासनिक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संगठनात्मक कौशल, जिम्मेदारी की इच्छा, उच्च स्तर की प्रतिबद्धता, लचीलापन, ऊर्जावान और मेहनती, दूरदर्शिता, साधन संपन्नता और चतुराई है, उद्यम चलाने में सफलता की बेहतर संभावना है। उद्यमी की व्यक्तित्व विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति या मनुष्य से काफी भिन्न होती है। ऐसी कुछ विशेषताएं जन्मजात होती है और कुछ अर्जित की जाती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के तहत आमतौर पर आयोजित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की मदद किसी व्यक्ति में लक्षणों को और विकास किया जा सकता है यदि वे कुछ हद तक उसमें मौजूद हो। दोस्तों, मैं अब उद्यमी बनने के गुण बताऊंगा, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी बनने के लिए कुछ गुण आपके पास जन्मजात होते हैं और कुछ गुणों को आप अभ्यास करके और अपने अनुभवों के आधार पर विकसित कर सकते हैं। हम यहाँ एक उद्यमी बनने की योग्यता व गुणों के बारे में बता रहे हैं जिसे आप अपने अंदर विकसित करके एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आइए उद्यमी के विभिन्न गुणों और विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर के बारे में जानेंगे लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। सोचने की शक्ति, यदि आप ठीक से सोचने और विश्लेषण करने में सक्षम हैं तो इसका मतलब है कि आप एक उद्यमी बन सकते हैं। आप भी अपने बिजनेस को अरबों टर्नओवर में बदल सकते हैं। व्यापार करने के लिए पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, आपकी सोचने और समझने की शक्ति अधिक मायने रखती है। इसीलिए अपने आइडिया के बारे में सोचें, विश्लेषण करें और उसे लागू करें। निर्णय लेने की क्षमता, एक उद्यमी को व्यवसाय चलाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ते हैं, इसीलिए आप में समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। सफल होने के लिए आपको सही समय और सही जगह पर निर्णय लेना होता है। यह क्षमता बिजनेस की यात्रा में आपका भविष्य तय करती है। निर्णय लेने की क्षमता एक उद्यमी की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है और विभिन्न बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। यदि आपके अंदर पूरी सृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने की भावना हो तो आप उद्यमी बन सकते हैं, क्योंकि सफलता प्राप्त करना उद्यमी का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आप बिना सेवा भाव के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ अच्छा नहीं दे सकते। समाज को कुछ मूल्य दिए बिना आप एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए लोगों के बारे में अच्छा सोचें और उन्हें कुछ वैल्यू दें। धैर्य रखना, धैर्य एक उद्यमी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जब भी आप एक उद्यमी बनने के बारे में सोचें तो ये ध्यान रखें कि जब भी मैं उद्यमी बनूंगा धैर्य रखूंगा। जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। धैर्य के बिना उद्यमी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पहला परीक्षा होता है और उसके बाद सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखते हुए सीखते रहना होगा और बाजार की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवा में सुधार करना होगा। कड़ी मेहनत करना, अगर आप में मेहनत और लगन की ताकत है तो आप उद्यमी बन सकते हैं। उद्यमी बनने के लिए यह सबसे जरूरी गुण है। कड़ी मेहनत के बिना आप उद्यमी नहीं बन सकते, क्योंकि उद्यमिता का दूसरा नाम मेहनत है। एंटरप्रेन्योरशिप आपसे 100% मांगती है।

0: 100% दिए बिना आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने मन में ये तय कर ले कि मुझे कड़ी मेहनत करनी है और सफल होना है, ईमानदारी रखना है। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब है कि आप एक सफल उद्यमी बनने में सक्षम हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो आप निश्चित रूप में असफल होंगे और पैसे कमाने के लिए आत्मविश्वास नहीं बढ़ पाएगा। ईमानदारी के बिना कोई भी व्यवसाय बाजार में अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसीलिए यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हो तो आपको ईमानदार बनना चाहिए। कुशल प्रबंधन। सफल उद्यमी वह है जो उद्यमी के सभी परिस्थितियों को सफलतापूर्वक संभाल सकता है। यह व्यवसाय का नियम है कि प्रबंधन जितना बेहतर होगा उतना ही अधिक अच्छा प्रदर्शन और विकास होगा। उद्यमिता की नींव बिजनेस प्रशंसा और प्रबंधन पर टिकी हुई है। यदि आपका व्यवसाय अच्छा है लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित नहीं किया गया तो ये निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। इसीलिए प्रबंधन कौशल में सुधार करें। मिलकर काम करने की शक्ति। एक सफल उद्यमी वह है जो अपने सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करता है, उनके सुख दुख में सहायक बनता है, सभी को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता है और सभी के साथ मिलकर काम करता है। परिस्थितियों के अनुसार बदलना। एक उद्यमी हमेशा परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो निश्चित रूप से अधिक प्रतिस्पर्धा या नई तकनीक के कारण असफल हो जाएगा। कुशल नेतृत्व। एक सफल उद्यमी की पहचान उसकी नेतृत्व योग्यता है। एक सफल उद्यमी वो है जो सही समय और सही जगह पर सही निर्णय लेता है। नेतृत्व गुण हर इंसान में होता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेने वाला और साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति ही एक वास्तविक उद्यमी होता है। अगर आप में ये उद्यमशीलता की योग्यता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप में ये गुण नहीं है तो आप सीखकर और अभ्यास करके इसे अपना सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 4:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम। संध्या 6:00 किसानवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता आज़ादी का पर्व 15 अगस्त। वार्ताकार होंगी श्रीमती आशा गुप्ता और आटम पहाड़ की पशुपालक श्रीमती टी ज्ञानेश्वरी के साथ की गई बातचीत। विषय होगा बकरी पालन आजीविका का साधन। आमने सामने कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। 6:45 पर आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी का द्वीपवासियों के नाम संदेश की रिकॉर्डिंग। मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 पर आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम ए वतन मेरे वतन। 8:00 आनंद दीजिए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा 8:30। 9:00

30 मिनट पर सुनिए कुछ फिल्मी देशभक्ति गीत और रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात्रि 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में जुनैन खान का सितार वादन आप सुन पाएंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सवेरे 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55, जिसमें जानकारी का विषय होगा लोबिया की खेती। सुबह 6:10 पर बताया जाएगा जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दुनिया शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सवेरे 6:30। सुबह 6:40 पर सुनिए वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। सवेरे 7:15 पर सुनिए फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के अंतर्गत आप कुछ फिल्मी गीतों का आनंद ले पाएंगे। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे चंदन दास, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 बजे आप सुनेंगे सद्भावना दिवस पर जानकारी और अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा। सवेरे 9:30 पर शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में आप गार्गी सिद्धार्थ का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनेंगे। सुबह 10 बजे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश सलाम सोल्जर्स कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11 बजे। 11:30 पर सुनिए गज़ल। फनकार होंगे सोनाली राठौर, रूप कुमार राठौर, अनुराधा और तलत अजीज़। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए ताहिरा सईद को। दोपहर 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप गीत लहरी कार्यक्रम सुनेंगे। दोपहर बाद 3 बजे एल्बम टाइम्स और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

अभी आप संदेश संदलिया और साधना सरगम का गाया सोचा ना था फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे इरशाद कामिल तथा संगीतकार थे संदेश संदलिया। अब सुनिए हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में तैयार वादा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की, और इस गीत को लिखा है समीर ने।

अब प्रस्तुत है कुमार सानू और सुनिधि चौहान के युगल स्वरों में शब्द फिल्म का ये गीत। बोल है इरशाद कामिल के तथा धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

कुमार सानू और सुनिधि चौहान के गाए शब्द फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे तमिल कार्यक्रम।

चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।

चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: স্বাধীনতা লাভের এতগুলো দশক পর আমাদের দেশ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, কৃষি, সাহিত্য, খেলাধুলো প্রভৃতি ক্ষেত্রেই অনেক উন্নতি করেছে, মহাকাশ বিদ্যায় অনেক সাফল্য অর্জন করেছে। গোটা বিশ্ব আজ তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে। আজ একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের স্বপ্নগুলি এবং আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা এখন আমাদের থামাতে পারবে না। আমাদের শক্তি আমাদের প্রাণচাঞ্চল্য, আমাদের শক্তি আমাদের ঐক্যবদ্ধতা, আমাদের প্রাণশক্তি রাষ্ট্র সর্বাগ্রে। এই সময় মিলিতভাবে স্বপ্ন দেখার, এই সময় সবাই মিলে সংকল্প নেওয়ার, এই সময় বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবার। এর সঙ্গে শেষ হলো আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রচারিত হলো আকাশবাণীর শ্রী বিজয়পুরম কেন্দ্র থেকে। অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি কার্তিক। ভালো থাকবেন সকলে, ভালো রাখবেন সকলকে, নমস্কার।
1: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चाकम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों का हमारा प्यार भरा नमस्कार और अभिनंदन। किसान साथियों, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। साथियों, बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके। जी हाँ, जीवन में बुरे दिन हमें मजबूत बनाते हैं, ताकि जब अच्छे दिन आए तो हम उनकी कद्र कर सके। और इस नेक विचार के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाइयों पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और आज का प्रश्न है, ज्यादा ढाल वाले खेतों में कंटूर बॉन्डिंग उपयुक्त है या सीढ़ीनुमा खेतों में? किसान साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं। ज्यादा ढाल वाले खेतों में कंटूर बॉन्डिंग उपयुक्त है या सीढ़ीनुमा खेतों में? इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इस प्रश्न का जवाब हम कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे। किसान भाइयों, जैविक खेती वो खेती है जिसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक और बीज की जगह प्रकृति आधारित चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे गोबर, गौमूत्र, वर्मी कंपोस्ट, बीजामृत, जीवामृत, हरी खाद, फसल अवशेष आदि। इसका मकसद है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना और लागत कम करना, रासायनिक मुक्त सुरक्षित भोजन देना, पर्यावरण को बचाना। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। दरअसल खेती में केमिकल युक्त खाद, खरपतवार व कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से आज नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिनका उचित समय पर इलाज न करने से लोगों की अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, जो भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती के मुख्य लाभ जो कि इस प्रकार से है, पहला है कम लागत। बाजार की महंगी रासायनिक खादों की जगह घर पर तैयार खाद का

0: उपयोग होता है। दूसरा है मिट्टी की सेहत। गोबर की खाद और केंचुआ खाद से जमीन की उपजाऊ क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। तीसरा है बेहतर दाम। जैविक तरीके से उगाई गई फसलों और सब्जियों की बाजार में मांग अधिक है और इनके दाम भी अच्छे मिलते हैं। चौथा है स्वास्थ्य सुरक्षा। यह रसायन मुक्त होती है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये तो थी कुछ बातें जैविक खेती के बारे में। किसान भाइयों, स्वतंत्रता दिवस हमें देश के वीरों की याद दिलाता है। यह दिन हमें एकता और शांति का संदेश देता है। भारत की आज़ादी के लिए कई महान लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। यह दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। साथियों, आओ झुक कर करें सलाम, करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है आज़ादी का पर्व और वार्ताकार है श्रीमती आभा गुप्ता।
1: आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज 15 अगस्त यानी कि हमारी आज़ादी का दिन है। सबसे पहले तो मैं आप सबको इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों में कितनी प्रेरणा, उत्साह और उमंग है। सच्ची है, अगर हमें अपने देश के प्रति प्यार नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है और पत्थर के समान है। प्यारे साथियों, आज हम जिस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं वह हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। किसी ने हंसते हंसते फांसी चूमी, किसी ने तलवार तानी थी और किसी ने अंग्रेजों के सीने में आग लगाई थी। इस तरह से अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप ही हम 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुए। तब से प्रतिवर्ष हम 15 अगस्त को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वास्तव में स्वतंत्रता या आज़ादी को मानव और देश का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया है। पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्य कोई भी पराधीन नहीं रहना चाहता और अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता है। आज़ादी से पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे। आप सब जानते ही हैं कि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश का वैभव, संस्कृति, ज्ञान, धर्म और दर्शन पहले मुसलमानों के और फिर अंग्रेजों की भेंट चढ़ गए। अंग्रेज हमारे भाग्य विधाता थे, हाथ हमारे थे, हथौड़ा उनका। आज़ादी मांगने वाले क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाता था। उस समय विश्व में ना हमारी इज्जत थी, ना अपना झंडा था और ना ही अपना संविधान था। आज हम आज़ाद हैं और पूरे विश्व में सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। आखिरकार हम कब तक गुलाम रहते? आप सब जानते ही हैं कि पराधीनता से मुक्ति पाने का प्रयास स्वाभाविक है। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अर्थात पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं है। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में शुरू हुआ, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब आदि ने सक्रिय भाग लिया। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर साइमन कमीशन का विरोध, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन आदि के द्वारा अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस आज़ादी की लड़ाई में आंदोलनकारी नेताओं को कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। इस संघर्ष में तिलक जी, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, पंत जी, लाला लाजपत राय,

0: सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और शास्त्री जी का नाम उल्लेखनीय है। प्रिय साथियों, इसके साथ साथ हम उन देशभक्त लेखकों और कवियों के योगदान को भी नहीं भूल सकते, जिनकी लेखनी ने हम भारतीयों के हृदय में आजादी का जोश जगाया। शत शत नमन है आप सबको। जैसा कि आपको मालूम ही है, इसी दिन की बदौलत देश के हर कोने में शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो बुराई और गुलामी के खिलाफ तब तक आजादी की कीमत का एहसास कराता है जब तक हम जीत नहीं जाते। 15 अगस्त एक तारीख नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव का दिन है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां हम अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखते हैं। आजादी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव से मुक्त हो। सच्ची स्वतंत्रता तब है जब हर बच्चा स्कूल जा सके, हर युवा को रोजगार मिले और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। इस आजादी को बनाए रखना और मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब प्रण करें, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आप सब जानते ही हैं कि 15 अगस्त का दिन हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। ध्वज के सम्मान में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश में अपने देश की उन्नति और भविष्य की योजनाओं के बारे में राष्ट्र को बताते हैं। राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति होती है। इसके साथ साथ हमारे देश के विभिन्न राज्यों में भी विशेष समारोह मनाए जाते हैं। आज का स्वतंत्र भारत हर क्षेत्र जैसे रक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, उद्योग तथा डिजिटल इंडिया आदि में तेजी से विकास कर रहा है। विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। ना कभी थमे हैं हम और ना कभी थमेंगे। अपने हौसलों के दम पर इस तिरंगे का नाम ऊंचा करेंगे। आज हमारी सैन्य ताकत इतनी अच्छी है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद हमारा देश भारत अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा चुका है। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। तो 15 अगस्त का दिन हम भारतीयों के लिए असाधारण है। इसे मनाने का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये दिन हम देशवासियों के मन में नए उत्साह, नए जोश, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। आज का पावन दिन राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इस आजादी से ही हमारी अस्मिता, राष्ट्रीय चेतना आन बान और शान है। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के उदाहरण के रूप में खड़े हैं। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर नागरिक गर्व से कह सके कि वे भारतीय है। एक ऐसा भारत जहां वैज्ञानिक, कलाकार और उद्यमी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर युगों युगों तक इस आजादी की रक्षा का प्रण लेते हैं। तभी हम गर्व के साथ इकबाल के शब्दों में कह सकेंगे, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जय हिंद।
1: अभी आप वार्ता सुन रहे थे, विषय था आजादी का पर्व और वार्ताकार थी श्रीमती आभा गुप्ता। किसान भाइयों, अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एटमपाड़ की रहने वाली श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी से, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ

0: पशुपालक भी है। तो साथियों आइए सुनते हैं पशुपालक श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी से की गई ये बातचीत। आइए मिलते हैं ज्ञानेश्वरी जी से और सुनते हैं उनकी जुबानी। तो ज्ञानेश्वरी जी आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी हम स्वेट हैं गधे रहते जी, तो इसीलिए मैंने गाय पालन और बकरी मुर्गी सब पालना
0: जी। तो आज बकरियों को पालने के लिए ज्ञानेश्वरी जी आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है?
1: के लिए मैम उनके लिए तो उतना भी ज़्यादा मेहनत तो नहीं है, फिर भी अभी फिलहाल के लिए मेरे पास एक 15 तक तो है। के लिए हम लोग दाना लाना पड़ते हैं
0: जी,
1: जो गाय लोग को खिलाते हैं तो वो भी खिलाते हैं हम लोग, साथ में गेहूँ कभी घर में थोड़ा जैसा कि चावल को घूर डाल के बना के भी खिला रहे हैं, जैसा बना के वो भी खिला रहे हैं, उसमें थोड़ा आटा मिला के वो भी खिला रहे हैं। और जो मिनरल मिक्सर पाउडर मिलता है के लिए, तो वो हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं, खरीद के लेकर आ
0: जी। ज्ञानेश्वरी जी इसे देने का क्या तरीका है, कैसे देते हैं?
1: जैसे कि गंजी कुछ बना के खा रहे हैं उसमें मिला के भी दे देते हैं पानी में रहने से, क्योंकि वो स्मेल जो है जो कुछ कुछ नहीं खाएंगे, इसीलिए हम लोग गरम गरम गंजी जैसा बना के उसको उसी में मिनरल मिक्सर पाउडर भी मिला के उसको दे देते हैं।
0: अच्छा
1: सर
0: आपके पास फिलहाल अभी कितनी बकरियां हैं?
1: सर टोटली मिला फिलहाल अभी के लिए तो 12 तक है।
0: रख रखाव आप कैसे करती है?
1: जी इसके लिए एक अलग से रूम बना के रखे हैं और फैन भी डाल के, क्योंकि बारिश का टाइम में ज्यादा मक्खी होते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि बारिश का टाइम बकरी जो है गीला में रहना पसंद नहीं
0: तो करते,
1: पाव में कीड़ा पकड़ने ये सब भी डर की वजह से हम लोग फैन भी डाल के रखते हैं, घास भी डालते हैं उसको, सुबह दाना दे देते हैं और दिन का टाइम आके जो पत्ती घास है खा रहे हैं तो वो सब जब जैसा मिलता है तो वो लेकर बकरी को दे रहे हैं। शाम को भी हम लोग गंजी वगैरह देते हैं।
0: वहाँ पे शाम के समय क्या धुआं वगैरह आप करती हो?
1: जी इसीलिए हम लोग धुआं करते हैं कि मच्छर नहीं काटने, और जैसे कि अभी बारिश का टाइम है तो जरा से बकरी को जल्दी से ठंडा पकड़ते हैं, जबकि उसको कफ जैसा हो जाता है ठंडा पकड़ के सर्दी होता है सब नहीं रहने, इसीलिए हम लोग उसको भी धुआं करते हैं। लेकिन बारिश का टाइम ठंडा तो रहते हैं लेकिन वो जल्दी ठंडा पकड़ने की वजह से कफ होते हैं, जल्दी सर्दी होते हैं, जल्दी ज्यादातर बकरी को वो सब जल्दी होते हैं, इसीलिए हम लोग उसके लिए धुआं करते हैं। तो शाम का टाइम में थोड़ा जैसा कि आगे सेकने रहता है उसका गर्म थोड़ा लगा के इसको चोचे के पास।
0: ज्ञानेश्वरी जी दूध उत्पादन कितना होता है?
1: दूध एक्चुअली हम लोग कभी यूज नहीं करते, जो बच्चा है उनका उसी को पिलाते, और ताकत दवाई वो के लिए कभी बच्चा लोग के लिए पूछ लेते तो जितना भी बकरे के पास तो बच्चा लोग को ही पिला देते, जरूरत पड़े कोई पूछते है तो हम लोग थोड़ा बहुत दे देते।
0: बकरी के घर को आप कैसे साफ करते हो?
1: डेली हम लोग तो ऐसे भी झाड़ू मारते हैं, और कि उसको जैसा कि जमीन में नहीं तख्ता मार के रख के नीचे में तो उसका जो भी गंदी है सब गिर, वो हम लोग जैसे कि पेड़ में डालने के लिए सब यूज कर सकते। जिसको मन था वो भी लेकर जा रहा है, तो इसके लिए हर दिन हम लोग सुबह भी उसके लिए सफाई करके रखते हैं, रात को भी सफाई करके रखते हैं, तो साफ सुथरा तो उसमें हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बीमारी में ज्यादातर बारिश में होते हैं बकरी को, जैसे कफ पूरा पकड़ते हैं, सर्दी पकड़ते हैं, और टांग में भी कीड़ा वगैरह लगते हैं, जैसे सर्दी होते हैं तो उसमें धूप वगैरह ज्यादा देने से उसमें बहुत बेहतर होता है, उससे थोड़ा जैसे कि हल्दी डाल के जो भी हम लोग को जो भी जानते हैं जानकारी है वो सब डाल के उसको इलाज करते हैं। और जुलाब वगैरह के ज्यादातर जितना हो सकते हम लोग घर में जो हम लोग को जानकारी है, जैसे कि अभी जुलाब है उसके लिए जैसे कि चाय पत्ती उबाल के देना उससे बहुत फर्क पड़ते हैं। अगर कोई कोई बकरी ऐसा भी होते हैं कि पेट फूल के ठीक भी नहीं होते, कभी कभी होता है, तो उसके लिए हम लोग वेटनरी जाते हैं दवाई लेकर आते हैं, तो ठीक हो जाएगा तो ठीक हो जाता है, वेटनरी की दवाई इतना भी नहीं बोल सकती कि ठीक होता है ठीक भी नहीं होता, उतना हम लोग घर में जो दवाई लगाते हैं उतना मेडिकल का दवाई ज्यादा यूज नहीं होता। और जो टांग में कीड़ा वगैरह लग जाता है उसके लिए भी हम लोग ज्यादातर घर में ही यूज करते हैं, मतलब जो स्प्रे तो मिलते हैं वेटनरी वाला भी देते हैं कुछ कुछ दवाई, सबसे ज्यादा हम लोग जो घर में जैसा कि सुक्का हो चिन्ना ये सब मिला के अगर रख देते तो उससे बहुत बेहतर ठीक हो जाते हैं।
0: तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगी?
1: जैसे कि अभी अम्मी लोग के जैसे घर में बैठे और बाहर जाके भी कुछ करने लगते क्योंकि बच्चा है, तरह में हम लोग नहीं बाहर जाके कुछ काम कर सकते, और ये इंटरेस्टेड है कि हम लोग को कुछ तो करना है, घर में काम हो जाता तो और कुछ काम नहीं रहे, इससे अच्छा जैसे कि हम लोग घर में छोटा बहुत कुछ भी काम कर सकते, तो इसीलिए मैं जितना दूसरा को सलाह

0: हो सकता है तो उसको जैसे कि मुर्गी पाल सकते हैं तो मुर्गी पाल सकते हैं, या तो बकरी पाल सकते हैं तो बकरी पाल सकते हैं। अगर उसको जो दिल है वो कर सकते हैं, अगर किसी के पास बगीचा है तो सब्जी गाड़ सकते हैं, कुछ सकते हैं। तो जो काली घर पे रहते हैं उस लोग को यही सलाह देता है कि जितना हो सकते है काली बैठने से अच्छा अगर हो सकते तो कुछ भी काम कर सकते घर में, क्योंकि ज्यादा घर का बच्चा लोग को देखभाल भी हो जाते हैं और जैसे कि हम लोग को टाइम पास भी हो जाते हैं। इसका भी हम लोग को इसमें कक्षा के लिए थोड़ा बहुत तो पैसे ठीक है, एक दो बार तो आते, फिर भी घर में बैठ के तो खाली से अच्छा ये काम करने से भी अच्छा है।
1: ज्ञानेश्वरी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। आपकी बातों से हमारे किसान साथी जरूर फायदा उठाएंगे। जी हाँ साथियों, जब एक गृहिणी पशुपालन करती है तो उसके जिम्मेदारी सच में दो गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा समझने की गलती ना करें, क्योंकि मेहनत से ही हर काम में इज्जत है। ज्ञानेश्वरी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप एटम पहाड़ की रहने वाली पशुपालक श्रीमती ज्ञानेश्वरी जी से की गई ये बातचीत सुन रहे थे। साथियों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अभी आपने एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। भाइयों, अब एक नजर डाल लेते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम के अनुमानों पर। साथियों, अगले दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान लगभग 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 12 से 16 अगस्त के दौरान श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने तथा रुक रुक कर बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है। विशेषकर निचले खेतों और सब्जी की फसलों में पानी जमा न होने दें। बारिश के कारण खेतों में नमी अधिक रहने पर फफूंद जनित रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए किसान नियमित रूप से फसलों की निगरानी करें और रोगग्रस्त पत्तियों एवं पौधों को अलग करें। उर्वरकों का प्रयोग तेज बारिश से ठीक पहले ना करें, क्योंकि पोषक तत्व पानी के साथ बह सकते हैं। इसी तरह बारिश के दौरान कीटनाशक या फफूंद नाशक का छिड़काव ना करें। मौसम साफ होने और पर्याप्त सूखा समय मिलने पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से पौध संरक्षण कार्य करें। इस दौरान केला, नारियल और अन्य बागवानी फसलों में जल निकासी पर विशेष ध्यान दें तथा कमजोर पौधों को सहारा दें। खेतों की मेड़ और नालियों की भी समय समय पर सफाई करते रहें। इसके साथ साथ भारी बारिश या गरज चमक के समय खुले खेत में काम करने से बचें। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मौसम परामर्श। किसान भाइयों, हमने कार्यक्रम के शुरू में ही आपसे प्रश्न पूछा था कि ज्यादा ढाल वाले खेतों में कंट

0: इनडोर बॉन्डिंग उपयुक्त है या सीढ़ी नुमा खेतों में? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्यादा ढाल वाले खेतों में कंटूर बॉन्डिंग उपयुक्त है। कुछ साथियों को पहले से ही इस प्रश्न का उत्तर पता था और कुछ भाइयों को इस प्रश्नोत्तर के माध्यम सही जानकारी मिल गई होगी। किसान भाइयों, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही है, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अब मुलाकात होगी अपने अगले अंक में कुछ नई जानकारियों और मुलाकातों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
4: अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आमने सामने के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए से नो टू ड्रग्स विषय पर SSB असम के कमांडर पराग चतुर्वेदी के साथ की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता तरन्नुम मोहम्मद।
5: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत आमने सामने के आज के संक में तरन्नुम मोहम्मद का अभिवादन स्वीकार करें। नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत की शुरुआत 2 अगस्त 2026 को की गई, जिससे विकसित भारत संकल्प 2047 का सपना सच हो सके। एक नशा सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाता है और दूसरा नशा उन्हीं सपनों को हमेशा के लिए छीन लेता है। फैसला हमें करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम से नो टू ड्रग्स, नशे को कहे ना में। नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि यह परिवार, समाज और पूरी राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर विषय है। आज हम जानेंगे कि नशे की लत क्यों बढ़ रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है और यदि कोई इसके गिरफ्त में आ जाए तो उससे बाहर निकलने का सही रास्ता क्या है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ SSB असम के कमांडेंट श्री पराग चतुर्वेदी एक विशिष्ट अतिथि मौजूद है। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री पराग जी, हमें अपना परिचय दें और बताइए कि आप नशा मुक्ति के क्षेत्र में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं।
6: सभी श्रोताओं को सबसे पहले मेरा जय हिंद। मैं पराग चतुर्वेदी, मैं एक सोल्जर हूँ, SSB ने कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और मैं अभी तक नगाने तो मैं इस अभियान से जुड़ गया। इसके पीछे एक अनायास एक बस मेरा एक टेन्योर था, तो मैं कभी दंतीर हेडक्वार्टर्स लखनऊ में पोस्टेड होता था तो कुछ ऐसे उस समय कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मुझको लगा कि शायद हमारा उत्तर प्रदेश का युवा जो है बहुत ज़्यादा नारकोटिक ड्रग्स की चपेट में है और जो और देश को अन्य खतरे हैं जैसे कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या आर्म्ड एमिनेशन एक्सप्लोसिव वगैरह की स्मगलिंग, तो न जाने क्यों मुझको ये लगा कि शायद इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ से हो सकता है पूरे देश को तो वो शर वो नारकोटिक ड्रग्स से हो सकता है। तो तभी से मैंने सन 2018 से मैंने ये बीड़ा उठा लिया था कि मैं ऐसे अपने व्यक्तिगत स्तर पर एक अभियान चलाकर, एक पवित्र अभियान चलाकर, व्यक्तिगत अभियान चलाकर मैं लोगों को जागृत किया करूँगा, विशेषतया युवाओं को, छात्र छात्राओं को। तो तब से मैं लगभग आज 2026

0: 8 साल हो चुके हैं और मैं इस अपने इस अभियान को अपने व्यक्तिगत समय में, ज़्यादातर अपने व्यक्तिगत समय में मैं इसको करता हूँ और मैंने बीड़ा उठा रखा है और मैं आगे भी करता रहूँगा। यूनिफॉर्म की ड्यूटीज़ तो सभी करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म की ड्यूटीज़ से इतर, उससे विभिन्न, उससे भिन्न होकर जो है ड्यूटीज़ करने का या कुछ और देश तक, देश के लिए कुछ और सेवा करने का, ये भाव मुझको 2018 में जागृत हुआ था। तब से लेकर और आज तक मैं 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मैं अपने इस अभियान को चला चुका हूँ। कुल 40 सिटीज़ और टाउन्स में मैंने ये किया है और कुल मिलाकर 111 स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, डायट, इंडियन आर्मी, पी फॉर्मेशंस में, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबी की, सीआरपीएफ की फॉर्मेशंस में, कोबरा की फॉर्मेशंस में मैंने जवानों को, सोल्जर्स को भी लेक्चर्स दिए हैं, युवाओं को, छात्र छात्राओं को मैंने लेक्चर्स दिए हैं। तो मेरा ये जो अभियान है ये अभी 111 पर नहीं रुकेगा। मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं इसको 1111 होने ना।
1: बिल्कुल। अब हम जानना चाहेंगे कि से नो टू ड्रग्स अभियान आखिर क्या है।
0: देखिए, जो मेरे व्यक्तिगत तौर पर मैं युवाओं को यही जागृत करता हूँ, छात्र छात्राओं को यही जागृत करता हूँ और हमारे सोल्जर्स को मैं जागृत करता हूँ कि वो लोग ना केवल स्वयं नशे की इस गिरफ्त से दूर रहें, इस मादक पदार्थों से दूर रहें, मादक पदार्थों से दूर रहें, बल्कि वो और लोगों में भी ये जागृति फैलाएं। मैं जहाँ जहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ तो मैं वहाँ के स्टूडेंट्स को मैं एक प्लेज भी दिलवाता हूँ, जो कि मैंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उसको डाउनलोड करके और मैंने उसका स्लाइड बनाकर मैं उसको दिखाता हूँ। अपने स्तर पर मैं अलग से दिलवाता हूँ। और सोल्जर्स तो मैं ये भी बताता हूँ, जब मैं सोल्जर्स की क्लासेस लेता हूँ तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप क्या योगदान दे सकते हैं, किस, और जो स्मगलर्स हैं, जो सिंडिकेट्स हैं, उनको हम किस प्रकार से अपने बुद्धिमत्ता और हमारे प्रोफेशनल तरीके से हम उसकी को कम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो लोग छुपा सकते हैं, किन किन तरीकों से हम उनको अनर्थ कर सकते हैं, उनको डिस्कवर कर सकते हैं कि वो ड्रग्स लेकर जा रहे हैं, क्या क्या वो तरीके हैं। तो केस स्टडीज भी मैं उनको बताता हूँ। मैं सोल्जर्स के लिए अलग तरीके के प्रेजेंटेशन को देता हूँ और स्टूडेंट्स को मैं अलग तरीके के प्रेजेंटेशन देता हूँ।
1: अच्छा, आजकल युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है, इसके पीछे कारण क्या है?
0: देखिए, युवाओं को एक तो ऐसे 2-3 इसके कारण मैं मेन मानता हूँ कि एक तो उनको, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, युवाओं की बात करें, तो जिन युवाओं को ऐसे, तो कहीं ना कहीं कोई सा कोई कुछ उनको फियर प्रेशर रहता है कि वो बच्चा तो इतने अच्छे मार्क्स ले आया, मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आई, और इस प्रकार से उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा ऐसे फ्रस्ट्रेशन या थोड़ा सा ना एक
1: डिप्रेशन
0: जैसा आने लगता है कि मुझको और अच्छा करना है। तो इस वजह से, इस डिप्रेशन के कारण, कीयर प्रेशर के कारण ऐसा होता है। दूसरा ऐसे भी होता है कि कुछ घर में घरेलू परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि जो माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं या अच्छी देख रेख नहीं मिल पाती है, तो यही कारण है कि बच्चों को थोड़ा एक फ्रेंच शब्द है, लासाफे, उनको बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिल जाती है, अपने आप से काम करने लगते हैं, खुद मुख्तार होकर। तो ये भी जो है, ये मुझको लगता है कि इस वजह से भी बच्चों को, जब कोई ज़ेर निगरानी नहीं रहती है तो इस वजह से भी बच्चों के बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं, नार्कोटिक ड्रग्स की तरफ चलने लगता है। तीसरा है कि ऐसे मूवीज में बड़ा ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है इन सब चीज़ों को, ऐसे, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। उसके बाद वो जब आते हैं और उनको क्या क्या पीड़ाएं होती हैं, वो कोई सोशल मीडिया में लिखा।
1: अभी आपसे ये बात करते समय मेरे जहन में एक बात आई है कि जब एक बच्चा बाहर जाता है, आप मान लीजिए ट्यूशन के लिए जा रहा है, तो वहां पे अगर उसको कोई सर्व किया, उसे कैसे पता चलेगा कि ये ड्रग्स क्या है? वो एक च्युइंगम भी हो सकता है, तो वो बच्चा कैसे रिकग्नाइज करेगा वहां पे कि ये मेरे लिए हानिकारक?
0: ये तो बहुत मुश्किल है कि अगर हम, मतलब वहाँ पर सिंपली, जैसे आपने बताया च्युइंगम है गया, कोई टॉफी हो गई, कोई चॉकलेट हो गई, आजकल तो गांजे की चॉकलेट जो है इजराइलिस हो रही हैं और गांजे की चॉकलेट जो हैं अब्रॉड में जो हैं वो बन नहीं है, और ऐसे में तो देखिए रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड

0: ले, और अगर रिकग्नाइज हो जाए तो इमीडिएटली उसको छोड़ देना चाहिए। मैं बच्चों को ऐसे एक रेड स्ट्रॉ सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक मूवी दिखाता हूँ, उसका टाइटल है आइसक्रीम, वो मैं उनको बच्चों को दिखाता हूँ, लघु वृत्त चित्र है, उसमें यही दिखाया कि कैसे जो है एक्चुअल में जिस समय बच्चे को ये एहसास हो जाए कि ये च्युइंगम ये सिगरेट है, उसमें अगर कहीं पर भी नशा है तो वो उसको पहली ही गार में छोड़ दे, अन्यथा अगर वो उसको रैलिश करने लगेगा तो फिर उसके इस विशेष साइकिल में, इस दुष्चक्र में फंसने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती।
1: कई बार परिवार को पता नहीं चलता कि उनका बच्चा इस गिरफ्त में है, तो ऐसे क्या संकेत से माता पिता ये समझ सके कि मेरा बच्चा ड्रग्स ले रहा है?
0: इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, वो ये कि ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को या युवाओं को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि वो ऐसे नशे की गिरफ्त में है क्या। तो वो जो आइडेंटिफिकेशन वाले जो हमारे मार्क्स कारक हैं, उनसे जो हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है या नहीं। जैसे कि मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, जैसे जो लोग ग्लू स्निफिंग करते हैं या मारियाना स्मोकिंग करते हैं, उनकी आंखों से पानी निकलने लगता है और आंखों में रेडनेस आ जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं। जो लोग हीरोइन वगैरह लेते हैं, वो लोगों का क्या है कि उनका रनिंग नोज रहता है, क्योंकि हीरोइन जो है ज्यादातर हीरोइन या कोकेन नाक के जरिए लिया जाता है, स्नॉटिंग लिया जाता है, तो ऐसे हीरोइन वालों लेने वाले लोगों का रनिंग नोज रहता है। ये लोग कोकेन स्निफ करते हैं, उनके ये जो आगे के नोस्टिल्स जो हैं नाक के ऊपर, ये जो है वो रेड कलर के हो जाते हैं। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है कि कोई बच्चा या बच्ची, जैसे जो लोग हीरोइन लेते हैं उन लोगों का ड्रास्टिक लॉस ऑफ वेट होता है। अगर कोई लड़का या लड़की एथलेटिक बॉडी वाला है, और जैसे एम्फेटामाइंस जो एक ये काफ़ी चल रहा है, सिंथेटिक ड्रग्स ही ज़्यादातर जो है बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसमें जो है क्रैम्पिंग ऑफ हैंड्स होता है, हाथ हाथ जो है वो तेज़ी से कांपने लगते हैं। या एम्फेटामाइंस जो लोग लेते हैं, वो लोग अपने लिप्स को ऐसे बार बार जो है वो उसको मॉइस्ट करने के लिए ऐसे उनको जीभ फेरते रहते हैं, तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं।
1: इस अभियान में पुलिस प्रशासन, स्कूल, कॉलेज और समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: ये डेफिनेटली जो सिनर्जी है, ये सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, एनजीओज, परिवार, विद्यालय, सभी की अगर सिनर्जी मिलकर काम करे, कंसर्टेड एफर्ट्स किए जाए, तो इस जो इस कारोबार पर, इस सामाजिक बुराई को हम इस खत्म कर सकते।
1: जो ड्रग सिंडिकेट्स है वो हमारे युवाओं को नशे की गिरफ्त में लाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना?
0: ऐसे सिंडिकेट्स हैं जो कि खास तौर से केवल और केवल एक्सक्लूसिवली युवाओं के लिए ही जो है उनको बर्बाद करने के लिए एड्रेस बेस्ड। तो मेरा यह मानना है कि वास्तव में पुलिस को या जो और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उनको ये चीज की ग्रेविटी समझते हुए आसपास जरूर निगाह रखनी चाहिए।
1: अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए किन प्रयासों की और किस क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए?
0: मैं इसमें ये चीज बताना चाहूंगा कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत ही नजदीक है, नजदीक में थाईलैंड और म्यांमार है, लाओस बिल्कुल नजदीक है, तो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस जो है वो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, जिसको डेथ ट्रायंगल भी बोला जाता है। यहाँ से बहुत ज्यादा अफीम की पैदावार होती है और हीरोइन पूरे वर्ल्ड को सप्लाई किया जाता है, और गोल्डन ट्रायंगल जिसको कि डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल भी बोला जाता है, बिल्कुल इंडिया के नजदीक है, और खास तौर से हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बहुत ज्यादा नजदीक है गोल्डन ट्रायंगल। हमारे यहाँ के यूथ के वल्नरेबल होने की, उनकी नागरिक की स्थिति की ज्यादा खतरा है। ऐसे में पुलिस को बहुत ज्यादा अलर्ट होकर करनी चाहिए चेकिंग। ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल इंटेलिजेंस इनपुट्स पर ही आप कार्रवाई करें, कुछ नहीं, कभी कभी जो है आपकी रेगुलर विजिलेंस भी जो है वो डिटरेंस जो है पैदा करेगी।
1: जी, रोकथाम की बात तो कर लिया हमने, अब उपचार और पुनर्वास की बात करते हैं, क्या ये संभव है?
0: ये संभव है, लेकिन मैं एक चीज जरूर अपने युवाओं को ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत ही ऐसे कहने के लिए तो ड्रग डी एडिक्शन जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन ये बहुत कम्बरसम, बहुत ही एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें जिससे निकलना बहुत ही कम युवा निकल पाते हैं। कारण यह है कि वो जैसे ड्रग डी एडिक्शन होता है तो उनका फिर री एडिक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब यह दुष्चक्र में फंसने का उनके चांसेस ज्यादा है, निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत ज्यादा इसके लिए विल पावर चाहिए होती है, बहुत ज्यादा

0: कंबर्सम मेडिकल पेनफुल बहुत प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जब जिसके लिए वो ड्रग्स वो दिया जा रहा है, जब वो उसको नहीं मिलता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो बच्चा है बच्चा।
1: यदि कोई युवा इस समय आपको सुन रहा है तो आप उनको क्या संदेश देना?
0: मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा आकाशवाणी अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम के माध्यम से कि वो एडिक्शन जरूर करें, जरूर एक एडिक्शन जरूर पालें, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वो नारकोटिक ड्रग्स का नहीं होना चाहिए। वो होना चाहिए अपने सपनों को साकार करने का, अपने करियर को प्राप्त करने का, अपने जो भी जुनून वो जो है वो बोलते ना इंडियन आर्मी में के क्या है वो आप में वो जोश है जुनून, तो वो जो है वो जोश है जुनून आपको बरकरार रखना है। बस आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और हर युवा चाहे वो लड़का है या लड़की, उसके पास अपने कुछ विंग्स होते हैं, मैं यही बोलता हूँ अदृश्य विंग्स होते हैं जो कि लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप उसको सुपोषित कर सकते हैं, उसको अच्छा न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, अच्छी पढ़ाई करकर अच्छा साहित्य पढ़कर अपने कंपटीशन की तैयारी करते हुए अच्छे मार्क्स लाते हुए आप उनको सुपोषित कीजिए, फिर देखिए फिर आप जो है जमीन पर नहीं टिकेंगे, आप उड़ते ही रहेंगे, क्योंकि आपको तो आसमान और आसमान से भी और ऊपर जाना है।
1: पराग जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आकाशवाणी श्री विजयपुरम में आए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैन, थैंक यू आकाशवाणी।
1: नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अनेक नई समस्याओं की शुरुआत है। स्वस्थ शरीर, शांत मन और उज्जवल भविष्य का रास्ता नशे से नहीं बल्कि सही सोच, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन शैली से होकर गुजरता है। आइए आज हम सभी एक संकल्प लें, नशा नहीं जीवन चुनेंगे, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को नशा मुक्त बनाने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
2: इसी संदेश के साथ हम अपने आज के इस विशेष कार्यक्रम से नो टू ड्रग्स, नशे को कहे ना को यही समाप्त करते हैं। अब तरन्नुम मोहम्मद को इजाजत दीजिए, नमस्कार।
3: आमने सामने कार्यक्रम के इस अंक में अभिया से नो टू ड्रग्स विषय पर एसएसबी असम के कमांडर पराग चतुर्वेदी के साथ तरन्नुम मोहम्मद की बातचीत सुन रहे थे। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की भेंट थी। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित नेताजी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी का दीपवासियों के नाम संदेश की रिकॉर्डिंग।
4: मैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देता हूं और उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर विकसित भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। पिछले 8-9 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी परियोजनाओं के तहत 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में हुआ, जिनमें 54 में से 15 पूरी हो चुकी हैं तथा बाकी शीघ्र ही ऑपरेशनल होने वाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगभग 92,000 करोड़ के निवेश से महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार आइलैंड परियोजना, जिसमें नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना प्रस्तावित हैं, मुख्यतः पीपीपी मॉडल के तहत की जा रही हैं, जो द्वीपों को एक इकोनॉमिक हब बनाने और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने में एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगे। इसी दिशा में 14,000 करोड़ की लागत वाले ग्रेट निकोबार आइलैंड हवाई अड्डे का लेटर ऑफ इंटेंट लगभग 300 करोड़ के निवेश से एक

कंसल्टिंग एजेंसी को जारी कर दिया गया है, जो कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग तथा क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित करेगी। साथ ही आईसीटीपी की डीपीआर और टाउनशिप का अपडेटेड मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है तथा पावर प्लांट का पावर परचेज अग्रीमेंट हस्ताक्षर किया जा चुका है। साथ ही श्री विजयपुरम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए फाइनल साइट सिलेक्शन व लिडार सर्वे के बाद आगामी प्रक्रियाएं प्रगति पर हैं। एयर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने हेतु उड़ान के तहत श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए स्पाइस जेट और मह एयर प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है। साथ ही फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के लिए शिवपुर तथा कार निकोबार में यात्री टर्मिनल तैयार हैं तथा कैम्बल बे में निर्माण अंतिम चरण पर है। वर्ष 2025 में 8 लाख से ऊपर पर्यटकों का द्वीपों में आगमन हुआ, जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस साल की प्रथम छमाही में ही द्वीप समूह की कुल जनसंख्या से अधिक लगभग 4.5 लाख पर्यटक यहाँ आ चुके हैं, जो कि गत वर्ष से लगभग 15% अधिक है। क्रूज टूरिज्म में भी तेजी आई है और वर्ष 2025-26 में 3 क्रूज शिप से लगभग 1200 पर्यटकों का आगमन हुआ था। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि 2 और 3 मई को राधानगर बीच पर समुद्र के नीचे 2400 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तथा 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर 2 स्कूबा डाइविंग गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्थापित किए गए और परसों ही इसके सभी पार्टिसिपेंट्स को व्यक्तिगत गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट्स व मेडल्स दिए गए हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने हमारे द्वीप समूह की वैश्विक स्कूबा डाइविंग गंतव्य के रूप में प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सर्फिंग महोत्सव के अंतर्गत आयोजित लिटिल एंडमान प्रो 2026 ने लिटिल एंडमान को वैश्विक प्रीमियर हाई वैल्यू सर्फिंग तथा एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दी है। पर्यटन के क्षेत्र में विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज हेतु लॉन्ग आइलैंड, एवीस आइलैंड, शहीद द्वीप तथा मेगापोर्ट रिजॉर्ट में 5-स्टार इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स के विकास हेतु पीपीपी समझौते निष्पादित हो चुके हैं। साथ ही रंगाचंग में 18 होल गोल्फ कोर्स, हॉर्नबिल एस्टेट में 5-स्टार रिजॉर्ट्स तथा बिजनेस होटल तथा राधानगर में बुटीक रिजॉर्ट्स, एडवेंचर पार्क तथा ग्लैम्पिंग के लिए पीपीपी मॉडल पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार हैं तथा शीघ्र ही इनकी आरएफपी जारी कर दी जाएगी। विश्व स्तर के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 3 समुद्र तटों रमन बगीचा, कर्मातांग तथा रामनगर को ब्लू फ्लैग पायलट स्टेटस भी प्राप्त हुआ है और पूर्ण ब्लू फ्लैग स्टेटस इसी वर्ष मिलने का लक्ष्य है। आईडीए के अंतर्गत द्वीपों के डीजलाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप 50 मेगावाट एलएनजी आधारित पावर प्लांट 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसके लिए पावर परचेज अग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रस्तावों के फलस्वरूप फ्लोटिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना हेतु बीएआरसी इत्यादि और विद्युत मंत्रालयों के विशेषज्ञों की इसी माह आगमन पर फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। वर्ष 2017-18 से हमारे निरंतर प्रयासों के चलते तथा इस विषय को आईडीए की 5वीं तथा 6ठी मीटिंग्स के एजेंडा में सम्मिलित करने के फलस्वरूप

लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर नो गो जोन क्षेत्र को ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। समुद्र मंथन के पहल के तहत अंडमान बेसिन में डीप वाटर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण को नई गति, प्राकृतिक गैस की खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आगे के अन्वेषण एवं आकलन से अंडमान क्षेत्र को प्राकृतिक गैस तथा ऑफशोर एनर्जी हब के रूप में विकसित किया

0: में 20 इलेक्ट्रिकल बसेस, 42 केएलडी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, मरीन रोड पुनर्निर्माण और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेक्टर सेंटर व पार्क्स सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कॉर्बिन्स कोव बीच डेवलपमेंट, वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल तथा मरीन एस्प्लेनेड परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 32 आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स तथा माया बंदर के इंटीग्रेटेड मॉडर्न फिशिंग हार्बर को लगभग 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। अटलांटा बे दिगलीपुर में डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट के लिए आईआईटी चेन्नई द्वारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पश्चात श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता के माध्यम से टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तथा बिजनेस प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका अंतिम रूप अगले माह ही अपेक्षित है। श्री विजयपुरम में यॉट मरीना के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद निजी क्षेत्र से रुचि प्राप्त हुई है और 10 से 15 हेक्टेयर वाटर फ्रंट भूमि की पहचान इसके लिए की जा रही है। सी कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करने तथा पुराने जहाज़ों को बदलने के हेतु प्रशासन 11 नए जहाज़ों की खरीद कर रहा है। साथ ही अगले 2-3 वर्षों में 29 जहाज़ों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चार्टर पर लेने हेतु शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ MOU अंतिम चरण में है। इस वर्ष 3 हार्बर फेरी के अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 2 लॉन्ग आइलैंड और दिगलीपुर में तैयार हो चुकी हैं और तीसरी अक्टूबर नवंबर तक तैनात होने की संभावना है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत परिवारों के समावेशन का 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी इच्छुक क्षय रोगियों को निक्षय मित्र सहायता से जोड़ा गया है तथा 14 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। वर्ष 2026 में द्वीप समूह के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए कुल 15 पदक अर्जित किए। इनमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में भारोत्तोलन में 1 कॉपर, अस्मिता विमेंस लीग तथा विभिन्न रोइंग चैंपियनशिप्स में 1 गोल्ड, 5 सिल्वर तथा 11 कांस्य पदक सम्मिलित हैं। इसी प्रकार एशियन साइकिल चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर पदक हासिल किया गया है। यह उपलब्धि द्वीप समूह में खेल प्रतिभाओं के निरंतर विकास तथा राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्षमता को दर्शाती है। अंत में परेड में की टुकड़ियों तथा स्कूली बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी अवार्डीज को बधाई देता हूं व आशा करता हूं कि कर्तव्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं सिंकैन के नेतृत्व मंडान तथा कमांड के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। इस अवसर पर मैं मुख्य सचिव, DGP व PCCF के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करता हूं तथा विभिन्न संगठनों के उन जनप्रतिनिधियों तथा समाज के अन्य वर्गों के नागरिकों का, जिन्होंने प्रशासन को अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूर्णतः कटिबद्ध हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद।
1: अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री विजयपुरम स्थित नेताजी

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको पुनः अवगत करवा दें कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों से। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा दुनिया शीर्षक पर। सवेरे 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगे चंदन दास, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। बाल जगत कार्यक्रम में सुबह 9 बजे आप सुनेंगे सद्भावना दिवस पर जानकारी और अंतरिक्ष दिवस पर चर्चा। सुबह 10 बजे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम होगा हेलो फरमाइश।

दोपहर 1:30 पर घर संसार कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 4:00, जिसमें सेंट मैथ्यू चर्च के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर।

शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। महिलाओं के लिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संगीत संगनी संध्या 6 बजे। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे धरती के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत छोटा नागपुरी लोकगीत। संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चर्चा, तत्पश्चात लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो म्यूजिक लवर्स। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10 बजे FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी

0: का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे केंद्र से, इस ब्रेक के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। पूरे देश के साथ साथ द्वीप समूह में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 को लेकर जागरूकता एवं ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और नयागांव स्थित मत्स्य बीज फार्म द्वारा मत्स्य बीजों का वितरण वंडूर ग्राम पंचायत कार्यालय में किया जाएगा।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। हर घर तिरंगा है, मन तिरंगा है और देश उत्साह तथा उमंग के साथ नए संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। लाल किले पर आज पहली बार पूरे राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान सपूतों का स्मरण कर रहा है जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश को स्वतंत्र कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें अपने कार्य, संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि युवा हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक खेल का जिक्र करते हुए कहा
1: कि दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के कोने कोने से प्रतिभाएं ढूंढने के लिए टैलेंट हंट अभियान चलाया जाएगा और उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सरकार फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र

निर्माण में बहनों और बेटियों का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित करने में सहयोग की अपील की। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद पुलिस, नौसेना और सेना के बैंड की धुनों के बीच राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया। उपराज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। समारोह के दौरान उत्कृष्ट सेवाओं के लिए चयनित व्यक्तियों को उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में द्वीप समूह में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि द्वीप विकास एजेंसी परियोजना के तहत 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में हुआ है। ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, पावर प्लांट और टाउनशिप की स्थापना प्रस्तावित है। एयर कनेक्टिविटी की सुदृढ़ करने के लिए उड़ान के तहत श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के लिए पिछले साल लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया गया है। उन्होंने कहा कैम्बल बे के यात्री टर्मिनल का निर्माण भी अंतिम चरण में है। द्वीपों में पर्यटकों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2025 में 8 लाख से ज्यादा पर्यटकों का द्वीपों में आगमन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। इस वर्ष 2 और 3 मई को राधानगर बीच पर समुद्र के नीचे 2400 वर्ग मीटर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तथा 22.3 मीटर ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर 2 स्कूबा डाइविंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए जाने की बात भी कही। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इससे पहले उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल पहुंचकर अमर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। द्वीप समूह के 3 जिलों में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 को लेकर जागरूकता एवं ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल डीब्रेट और आईटीआई डॉलीगंज में छात्रों और राष्ट्रीय पहल की जानकारी दी गई। कार्यशाला में छात्रों को द्वीपों की संस्कृति, विरासत, पर्यटन और विशिष्ट उपलब्धियों पर डिजिटल सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंडमान निकोबार पायलट चरण के लिए चयनित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। इच्छुक प्रतिभागी 1 से 3 मिनट की मौलिक डिजिटल सामग्री माई वेव्स के माध्यम से 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। प्रशासन ने छात्रों, युवाओं, ब्लॉगर्स, फोटोग्राफरों और अन्य रचनात्मक प्रतिभाओं से अधिक भागीदारी की अपील की है। नयागांव स्थित मीठे पानी के मत्स्य बीज फार्म द्वारा भारतीय प्रमुख कॉर्प के मत्स्य बीजों का वितरण 18 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से वंडूर ग्राम पंचायत कार्यालय में किया जाएगा। इच्छुक मत्स्य पालक निर्धारित समय पर पहुंचकर बीज प्राप्त कर सकते हैं। फ्राई आकार के मत्स्य बीजों के प्रत्येक ऑक्सीजन युक्त पैकेट की कीमत ₹135 है, जिसका भुगतान मौके पर किया जा सकता है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत उत्तर एवं मध्य अंडमान पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा बाइक रैली और वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य से लोगों में देशभक्ति, राष्ट्र एकता और सामुदायिक सहभागिता की भावना को बढ़ावा देना था। पुलिस ने नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज को गर्व के साथ फहराकर अभियान में भाग लेने की अपील की। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए द्वीपों में संचालित लेड एसिड बैटरी रिसाइक्लरों की जानकारी आम जनता से मांगी है।

इच्छुक व्यक्ति संबंधित जानकारी 20 अगस्त तक सदस्य सचिव ANPCC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग डॉलीगंज को दे सकते हैं। जानकारी ईमेल dstpcc.andamans@and.nic.in पर भी भेजी जा सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। पूरे देश के साथ साथ द्वीप समूह में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज 2026 को लेकर जागरूकता एवं ओरिएंटेशन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। और नयागांव स्थित मत्स्य बीज फार्म द्वारा मत्स्य बीजों का वितरण वंडूर ग्राम पंचायत कार्यालय में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत।
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी।
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक।
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर।
6: जन पॉलिसी जन कैयन।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।
7: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
8: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर आज रात 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल यानी 16 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर नालंदा जलियान कल यानी 16 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इस जलियान की वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप जाने के लिए एमवी रंगत कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलियान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी रानी चंगा कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलियान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर

0: स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इस जलयान की वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान परसों यानी 17 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभी आप उदित नारायण और साथियों का गाया फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का गीत सुन रहे थे। बोल थे जावेद अख्तर के तथा धुन बनाई थी जतिन ललित ने। अब सुनिए आनंद राज आनंद का गाया लिखा व संगीतबद्ध किया फिल्म परदेसी बाबू का ये गीत।

आनंद रज आनंद के गाए परदेसी बाबू फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आए हैं एक विशेष देशभक्ति कार्यक्रम, ए मेरे प्यारे वतन।

दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए केवल एक दिवस नहीं, बल्कि यह हमारे लिए एक गर्व का अनुभव है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली और हम इस दिन को एक जश्न के रूप में मनाते हैं। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन स्कूलों से लेकर कार्यालयों, विभिन्न संस्थानों और जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पूरा देश ही देशभक्ति के रंग में रंग जाता है और सभी जगहों पर हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे को बड़ी शान से फहराया जाता है।

0: उनको हम दफनाएंगे, अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे।
1: दोस्तों, जब हम हमारे देश की आज़ादी का राष्ट्रीय पर्व मना रहे होते हैं, तब हम देशभक्ति की भावना में डूबे हुए होते हैं। हमें उन पलों में उन वीर सेनानियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। हमारे देश के वह वीर जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ शांति और शक्ति दोनों रूपों से प्रहार किए, जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सरोजनी नायडू जैसे सेनानी शांति से आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे, तो वहीं शक्ति के रूप में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर अंग्रेजों पर प्रहार कर रहे थे। और बावजूद इसके कि अंग्रेज इन सभी सेनानियों पर अत्याचार कर रहे थे, पर हमारे देश के वे सभी स्वतंत्रता के वीर डटे रहे और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिला दी। आज का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम सभी एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, जो इस देश को अपने लहू से सींच कर हमें दे गए, ताकि हम इस देश को उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जिसका सपना कभी उन सेनानियों ने देखा था।
2: कर चले हम पिता जानतन।

दोस्तों, हमें आजादी तो सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश पर कई वार हुए और उन सभी वारों से हमारी रक्षा की हमारे देश के बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने। हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और जब भी हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता की बात होती है तो वह अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं रुकते। चाहे कोई राष्ट्रीय आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति हो, हमारे देश के सैनिक सदैव ही निस्वार्थ देश के लिए खड़े रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, आज का दिन हमारे देश के उन सभी सशस्त्र बलों के सैनिकों को नमन करने का दिन है, उनकी कुर्बानियों को सलाम करने का दिन है और उन्हें धन्यवाद देने का दिन है जो वह हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हैं और हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

हर जगह हर तरफ हर्ष और उमंग ही छा रहा है। नीले गगन के तले शान से जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हर कहीं देशभक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर कहीं देशभक्ति के कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमें देश प्रेम के रंग में भिगो रहे हैं। पर ये आज़ादी हमने जिनके कारण पाई है, पर ये आज़ादी हमने जिनके कारण पाई है, हमें आज़ादी जिन्होंने अपनी जान देकर दिलाई है, पर ये आज़ादी हमने जिनके कारण पाई है, हमें आज़ादी जिन्होंने अपनी जान देकर दिलाई है, उन वीरों के शौर्य को सलाम है।

वीरों के शौर्य को सलाम है, उनके बलिदान को हमारा नतमस्तक प्रणाम है। उन वीरों के शौर्य को सलाम है, उनके बलिदानों को हमारा नतमस्तक प्रणाम है। जब अहिंसा के मार्ग पर संघर्ष जमकर किया था, जब अहिंसा के मार्ग पर संघर्ष जमकर किया था, सारे सितम सारे जुल्म जब सबने हंसकर सहा था, जब अहिंसा के मार्ग पर संघर्ष जमकर किया था, सारे सितम सारे जुल्म जब सबने हंसकर सहा था, उस वक्त पूरे देश में शोक और गुस्सा दूना था, उस वक्त पूरे देश में शोक और गुस्सा दूना था, जब रंग दे बसंती चोला ने, जब रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा था, जब रंग दे बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा था। ऐसी ही कई गौरव गाथा हमारे उन महावीरों की है, ऐसी ही कई गौरव गाथा हमारे उन महावीरों की है। मौत को हंसकर गले लगाया ये गाथा उन शेरों की है, मौत को हंसकर गले लगाया ये गाथा उन शेरों की है। भारत माँ की जंजीरों को तोड़ दिया जिन हाथों ने, भारत माँ की जंजीरों को तोड़ दिया जिन हाथों ने, हम जिनके ऋणी हैं, हम जिनके ऋणी हैं, ये कहानी उन शूरवीरों की है, ये कहानी उन शूरवीरों की है। दोस्तों, हम कभी भी हमारे देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों का कर्ज नहीं चुका पाएंगे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई है। अंग्रेज़ों के सारे अत्याचार सहकर भी वे डटे रहे, एक आज़ाद भारत का ही सपना लेकर ही वे जिए, और उनके बलिदान को हम सदैव याद करते रहेंगे, सलाम करते रहेंगे, और उनके कारण जो हमें आज़ादी मिली है उस आज़ादी के लिए सदैव उनके शुक्रगुजार।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम ए मेरे प्यारे वतन यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्म गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीर जारा फिल्म के इस गीत से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रिथा मजुमदार की। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत दिया है संजीव कोहली ने।

दोस्तों, कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और साथियों का गाया भारत भाग्य विधाता फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं महबूब तथा संगीतकार हैं हरिजू रॉय।

अनुराधा पौडवाल और साथियों के गाए भारत भाग्य विधाता फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान।

पहले रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 78410 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के 1-1 पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूर संचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वहीं सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आप

0: है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिन के भीतर उचित माध्यम से अपर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देखें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just Rs. 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं गौरव गान।

रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत

0: कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
0: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूँ। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुखरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह

0: ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों

0: पितागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोग

0: की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raised the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
2: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
2: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया है। और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है।
1: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI.

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a special report on the occasion of 80th Independence Day.
1: Good evening, listeners. I'm Akhila. The country is celebrating its 80th Independence Day today. From the national capital, Delhi, to different parts of the country, the tricolor flag is flying proudly and people across the nation are celebrating this national festival with enthusiasm and pride. Prime Minister Narendra Modi today hoisted the national flag at the historic Red Fort and extended Independence Day greetings to the people of the country. In his address, the Prime Minister spoke about India's development journey, self-reliance, energy security, youth, women, national security and the goal of building a developed nation by 2047, among several other important issues. Let us first listen to the Prime Minister, who spoke from the Red Fort on this historic occasion about Vande Mataram and the spirit of the nation.
2: Azadi ke baad 15 August, Lal Kile par pehli baar Vande Mataram gunj raha hai. आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है?
1: In this journey of independence, countless brave men and women made the supreme sacrifice. Paying tribute to their sacrifice and dedication, the Prime Minister called upon the people to build the India they had dreamed of.
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Amid the celebrations of Independence Day, the Prime Minister also spoke about parts of the country currently facing the challenge of floods. Expressing concern for the affected people, he assured them of all possible assistance.
2: बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं, पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
1: But India's aspiration do not end here. The Prime Minister made it clear that the country will no longer limit itself to small dreams. The goals will be bigger and the resolve to achieve them will be even stronger.
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के
1: A strong economy is essential to turn these big dreams into reality. Highlighting India's rapid economic growth and changing economic landscape, the Prime Minister spoke about the country's growing capabilities.
2: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
1: Modern infrastructure is giving further strength to this pace of development. Speaking about the expansion of roads, railways, air connectivity and digital connectivity of the past decade, the Prime Minister said,
2: हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार
1: India is also reaching new heights in the field of technology. In this context, the Prime Minister mentioned the country's first hydrogen-powered train and expressed confidence in India's technological capabilities.
2: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: From technological strength to a growing global identity, the message is clear. India must move forward in the

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत है रोजा फिल्म से। आवाज़ है हरिहरन की। पी के मिश्रा के लिखे गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

0: अभियां ए.आर. रहमान का गाया स्वदेश फिल्म का गीत सुन रहे थे। बोल थे जावेद अख्तर के तथा धुन बनाई थी ए.आर. रहमान ने।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज।

शहीद भगत सिंह। कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है कुमार सानू और आदित्य नारायण के स्वरों में दिल जले फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं जावेद अख्तर तथा संगीतकार हैं अन्नू मलिक।

दिल जले फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: तकनीक और इस वाद्य की संभावनाओं को एक नई दिशा प्रदान की। जाफर खानी बास को लयात्मक नवाचार और स्वर की गहराई पर आधारित सितार वादन की एक दुर्लभ और अत्यंत परिष्कृत परंपरा के रूप में जाना जाता है। इस शैली के तकनीक के बारे में श्री जुनैन खान बताते हैं कि इसमें एक साथ दो और कभी कभी तीन तारों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बाएं हाथ की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों हाथों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होता है। श्री जुनैन खान हलीम अकादमी ऑफ सितार के कार्यकारी निदेशक हैं। यह भारत की पहली सितार अकादमी है जिसकी स्थापना वर्ष 1976 में उनके पिता उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान ने की थी। श्री जुनैन खान जाफर खानी शैली में भारत तथा विदेशों के विद्यार्थियों को सितार की शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संगीत समारोहों का आयोजन करते हैं और अपने विद्यार्थियों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री जुनैन खान ने भारत के अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोह और मंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है। तानसेन समारोह ग्वालियर, संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में आयोजित मारवाड़ समारोह, जिसे पूर्व में मंड समारोह के नाम से जाना जाता था, सामापा संगीत सम्मेलन नई दिल्ली, पंडित नंदकिशोर शर्मा स्मृति समारोह भोपाल, विश्व संगीत दिवस 2025 मैसूर, राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह नई दिल्ली प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने प्रस्तुतियां दी है। फ्रांस के नांत में आयोजित फेस्टिवल द एते, इंटरनेशनल रोंडाला फ्लैट स्ट्रिंग फेस्टिवल फिलीपींस, जोंजू इंटरनेशनल सोरी फेस्टिवल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित इंडिया कम्युनिटी सेंटर में आयोजित बसंत बहार में अपनी प्रस्तुतियां दी है। श्री जुनैन खान चीन के बीजिंग में आयोजित भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के आधिकारिक सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी भाग ले चुके हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। वर्ष 2018 में सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा सामापा संगीत तेजस्वी सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स अर्थात NCPA के सहयोग से गान वर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR द्वारा एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है श्री जुनैन खान का सितार वादन। आज की प्रस्तुति का आरंभ वे करेंगे राग रागेश्री से। विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है और द्रुत गत भी तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनीश प्रधान।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय रेनाउंड सितारिस्ट श्री जुनैन खान। Born in Bhopal, Madhya Pradesh, Zunain Khan grew up in Mumbai. He began playing sitar at the age of 5 under the tutelage of his father, Ustad Abdul Halim Jafar Khan, who transformed sitar composition, playing style, technique and pedagogy as well as capabilities of the instrument through his innovation of the Jafar Khani Baz. Jafar Khani Baz style has been described as a rare, highly sophisticated tradition of sitar playing rooted in rhythmatic innovation and tonal depth. Zunain Khan explains the technique as involving the simultaneous use of two or sometimes three strings. The left hand is called upon to do much more work, resulting in a better synchronization between the two hands. Zunain Khan is the executive director of Halim Academy of Sitar, the first sitar academy in India, founded in 1976 by his father. He teaches sitar in the Jafar Khani style to students across India and abroad and organizes music events to commemorate Guru Purnima and showcase performances of his students. Zunain Khan has performed at prestigious festivals and venues in India, including Tansen Samaroh Gwalior, Marwad Festival, formerly known as Man Festival, under the aegis of the Sangeet Natak Academy, Samapa Sangeet Sammelan, New Delhi, Pandit Nandkishore Sharma Smriti Samaroh Bhopal,

0: ये था राग रागेश्री। अपने सितार वादन को जारी रखते हुए श्री जुनैन खान अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग किरवानी। द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Raag Rageshri by Shri Zunain Khan. He continues his sitar recital with Raag Kirwani, Drutgat set to Teen Taal.

0: आप सुन रहे थे राग केरवानी। आज के संगीत कार्यक्रम का समापन श्री जुनैन खान राग देश में धुन से कर रहे हैं, दादरा ताल में निबद्ध है।
1: यू आर लिसनिंग टू कीरवाणी। ही कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद धुन इन राग देश सेट टू ताल दादरा।

0: ये थी राग देश में धुन। इसी के साथ आज के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में श्री जुनैन खान का सितार वादन संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर थे श्री अनीश प्रधान। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र में ध्वनि मुद्रित एवं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: That was धुन in राग देश, and that concludes the sitar recital by Shri Zunain Khan. In tonight's national program of music, he was accompanied on the tabla by Shri Anish Pradhan. This program was recorded at the studio of Akashwani Mumbai, and the broadcast came to you from Akashwani Delhi.

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है, जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय इलाकों में हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 18 अगस्त तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 11:37 हुए हैं। आज की हमारी दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 25वीं तिथि यानी 16 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। अपनी पहली सभा में हम आप सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हैं।

0: श्रोताओं, इस समय सवेरे के 5:30 हुए हैं। वक्त है अनमोल विचार का।
1: जिम्मेदारियां बोझ नहीं होती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने का अवसर होती है, जो इंसान